0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
1: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
4: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
8: डील कहाँ?
4: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
6: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
9: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
0: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
0: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLworldwide.com.
11: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: भाई बारिश के मौसम में सपने देखना थोड़ी ना बंद हो सकता है। बारिश के मौसम में सपने देखना तो और भी देखना चाहिए। मे बी विद सम लड़की भीगी भागी सी, या फिर योर पार्टनर, योर लव्ड वन, हू एवर इट इज, या फिर अकेले ही देख लो। मैं तो अकेले देखती हूँ। अकेले देखने में भी बड़ा मजा आता है। वेन यू एक्चुअली अचीव योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स इन लाइफ, आई फाइंड दैट एब्सोल्यूटली सेंसेशनल। आई एम लाइक यस, इट्स लाइक अ पावर मूव, यू नो। तो वैसे ही अगर आप अपने घर बनाने का सपना देख रहे हैं, देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशन फॉर बाइंग या रीफाइनेंसिंग। कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। भाई सपनों का घर सबको बनाने का हक है, बस डोंट अबैंडन इट एंड रन ऑफ टू इंडिया और वेर एवर यू आर फ्रॉम, बिकॉज यू नो लाइफ गॉट टफ। मेक, इफ यू कैन मेक थिंग्स हैपन देन मेक थिंग्स हैपन, बट इफ यू कांट दैट्स ओके टू। वैसे भी मार्केट इज अ बायर्स मार्केट, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड।
1: सोती रातों में जागी।

भाई भीगी भागी लड़की हो या नहीं हो कोई बात नहीं, अगर आपको किसी से प्यार है या आप किसी को पसंद करते हैं, डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट गो एंड आस्क देम आउट राइट नाउ. यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्रोच, व्हाट यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स दिस होल पास्ट वीक, द फैक्ट दैट सो मेनी पीपल आर सिंगल राइट नाउ बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू हैव ए रियल कॉन्वर्सेशन एंड हाउ टू आस्क पीपल, स्पेशली इन आर टूडेज डिजिटल एज. आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दैट, फॉर थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड लेटिंग मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल. कि कल जब हम बातें कर रहे थे कि भाई जस्ट गो आस्क समवन आउट, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वो मना कर देंगे, बिग डील, इट्स ओके, एटलीस्ट आपने पूछा तो सही एंड यू गॉट इट आउट ऑफ द वे. एंड समवन जस्ट कॉल्ड मी अप टू टेल मी दैट दे आर गोइंग टू गो एंड अप्रोच द पर्सन दैट देव हैड फीलिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड सम हाउ द वट एवर आई सेड येस्टरडे एंड टूडे गिव देम द कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली अप्रोच दैट पर्सन. आई एम सो ग्लैड टू हियर दीज काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज. गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, एनीथिंग दैट ऑल द सजेशंस दैट आई गेव, वेदर इट्स लाइक रिलेटेड टू डेटिंग और जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस और एनीथिंग लाइक दैट, एंड इफ थिंग्स एक्चुअली वर्क फॉर यू, लेट मी नो बिकॉज इट गिव्स मी ऑल्सो कॉन्फिडेंस. ओके, इट गिव्स मी ऑल्सो द एनर्जी. एनर्जी इज रेसिप्रोकेटेड. रेसिप्रोकेटेड मतलब मैं आपको एडवाइस देती हूँ, मैं आपको अपनी एनर्जी देती हूँ, आप मुझे अपनी एनर्जी दो, एंड देन आई कैन डू बेटर. सो दिस इज वॉट इज, दिस इज हाउ यू नो एंटरटेनमेंट और दिस काइंड ऑफ मीडिया बिजनेस वर्क. सो वेन आई हेयर ऑल दीज अमेजिंग स्टोरीज फ्रॉम यू गाइज, आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव इट. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे. ऑल द बेस्ट. आई होप शी सेज येस एंड आई होप यू गेट टू गो ऑन अ ब्यूटिफुल डेट एंड देन यू नो इन्जॉय दिस बारिश, क्योंकि दिस इज द टाइम, वाई नॉट जस्ट गिव इट अ शॉट. तो कंटिन्यूइंग विथ आर रेन एंड बारिश का थीम, यू नो दिस वन, आई विल जस्ट प्ले द सॉन्ग.

guys, इस गाने में आपने ध्यान दिया, there was this one part which is, I mean, to be fair, it's a little cringe, but also it's kind of funny to, it's kind of fun to say it. वो बीच में वर्स नहीं आया था, डू डू डू डू डू डू डूबा. Exactly, भाई अगर आप भी डू डू डू डू डू डू डूब मत जाना इस बारिश के मौसम में, and do not get into an accident. However, बारिश का मौसम है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि रोड्स गेट स्लिपरी एंड यू कैन गेट हर्ट एंड एवरीथिंग. एंड इफ यू डू गेट इनटू एन एक्सीडेंट लाइक दैट, डू डू डू डू नॉट वरी, बिकॉज द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा इज हियर. दे इफ यू एवर गेट स्टक इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक दैट एंड यू आर हर्ट बैडली, देन कॉल पर्सनल अटर्नी उमर ख्वाजा, पर्सनल इंजरी अटर्नी उमर ख्वाजा. यू कैन फोकस ऑन हीलिंग वाइल ही विल फाइंड द केस फॉर यू एंड डिफेंड यू विद योर इंश्योरेंस कंपनीज, सो यू कैन गेट ऑल द मनी दैट यू स्पेंड ऑन योर मेडिकल treatments, because I know things are expensive. This is America, right? Call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. Remember, personal injury attorney, okay?

भाई मैंने तो सुना है बारिश के मौसम में लोगों की आर्थराइटिस भी बढ़ जाते हैं, या वो सर्दियों के मौसम में होता है, आई डोंट नो. पीपल हु हैव आर्थराइटिस, यू कैन कॉल मी एंड लेट मी नो. हाउएवर, अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस इन अ प्लेस लाइक अमेरिका. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बिकॉज इट इज़ सो एक्सपेंसिव, स्पेशली इफ योर कंपनी डजेंट प्रोवाइड इट एंड यू डोंट गेट सोशल सिक्योरिटी और एनीथिंग लाइक दैट. देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हैज़ अ प्लान, इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट, ओनली फॉर $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटेटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेले हेल्थ एंड सो मच मोर. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthphysicians.com. Please remember, this is not a health insurance. There are eligibility restrictions. And secondly, their Irving and Frisco location is open on Saturdays and Sundays as well. So, hey, that's pretty cool. So, if you get sick on a Sunday, you know you where to go. You need to go to Passion Health Primary Care. So, guys, moving on. जैसे मैं बोल रही थी, बारिश का मौका है, बारिश के गाने हम बजा रहे हैं. 8 o'clock comeback, we are going to play our giveaway game. Aaj ka giveaway is also from the Fun Pizza Kitchen. And there will continue our conversation with how to improve your conversation skills and how to read the room, how to read body language, and whether or not you should actually go ahead and approach. And honestly, in my case, in my opinion, just go ahead and do it. Big deal. They're going to say no. So what? At least you got it out of the way and now it's done, right? That's what you have to think about. So, pata chale, wo bhi aapko pasand karti hai ya karta hai ya jo bhi hai. Maybe they also like you and you actually get a nice date out of it. It may not end up in a relationship, but you know what? You get a date, you get to meet someone new and it's always fun to meet new people, isn't it? So, let's continue with our theme and come back and we will talk some more. This is Ippy the Hippie and you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये क्या चल रहा है? Hang on a second, I'm going to fix this. ये auto play पे कई बार चले आते गाने and then you know we're like, wait, that's not what I was going for. So here we go.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Ek aur laddu le lo.
6: Todi aur biryani.
5: Are America jaake thodi milega.
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए.
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. हेल्थ प्राइमरी केयर.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
14: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
13: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
14: दम में नरमी, मसालों में जादू और

0: guys, we are back. This is Ippy the Hippie and you are listening to Funasia Radio 104.9 FM. And yesterday we were talking about how to read the room. We will continue that discussion. Lekin uske pehle thoda sa follow-up or not follow-up, revision or review of what we talked about yesterday. पहली चीज तो भाई डरो मत, जिसको आस्क आउट करना है कहीं भी जस्ट गो आस्क आउट, बिकॉज यू नो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू गेव इट योर बेस्ट शॉट. देन द नेक्स्ट पर्सन, देन द नेक्स्ट, नॉट द नेक्स्ट पर्सन, सॉरी, देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू टू अप्रोच अ पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल सम बॉडी लैंग्वेज थिंग्स लाइक मेक आई कॉन्टैक्ट, स्माइल एट स्ट्रेंजर्स or just say hi or good morning. These help in general improvement of conversation skills. Like I was saying yesterday, when I was doing my master's, my professor, Dr. Savyasachi, one of the most greatest professors, honestly, I've ever had, he had given me a task, in fact, my entire class a task, ki Jama Masjid mein jaake baitho, Delhi mein, and make a conversation with five people, and then my assignment was to summarize that conversation and bring it to him, and that was the assignment, like write a paper on it. And at first it was one of the most nerve-wracking thing ki bhai main aise Jama Masjid, Delhi wali jagah hai waise bhi, theek hai, Delhi mein waise hi people say it's super unsafe. America mein to people actually say hi to each other and smile at each other all the time, so it's not a big deal. But imagine in a place like Delhi, in a conservative area like Jama Masjid, he gave us that assignment. And the thing is, वो खुद वो असाइनमेंट कर चुके हैं, उनको उनके प्रोफेसर ने वो असाइनमेंट दिया था, सो ही गेव इट टू अस. एंड आई थॉट दैट वाज सच अ अमेजिंग थिंग, एंड ऑनेस्टली इट हेल्प मी डेवलप माय कॉन्वर्सेशन स्किल्स, बिकॉज बाय द थर्ड पर्सन आई वाज लाइक, अच्छा ठीक है यार, जनरल बात ही तो कर रही हूँ, उसमें डरने का क्या है, हाई हेलो बोल रहे हैं, दिन पूछ रहे हैं, उनका हाल पूछ रहे हैं, दैट्स इट. Then the next thing you can do is ask a very simple question like maybe the direction, maybe how is their day going, maybe what they do for work, who, how many, whatever, something simple, not something too, too detailed, or like not something too personal like their bank password, but just something simple, right? Then you can also start this conversation by giving a genuine compliment to someone and telling them, hey, I love your outfit. People say that in Dallas all the time. When I first moved to the US and when people would actually give me a compliment on my outfit, I'd be like, oh, really? People do that on an everyday basis? Yes, not just on a shadi or a party or anything like that, but generally, every single day people will be like, oh my god, I love that color on you, it's so beautiful. And I was like, wow, people are actually nice over here. So yeah, you can do that too, and there's nothing wrong in it. You can just compliment someone. कॉम्प्लीमेंट देने से आपके बैंक बैलेंस कम नहीं हो जाएगा, सो इट्स ओके, यू कैन जस्ट यू नो एक्सटेंड दैट कॉम्प्लीमेंट. फ्री है कॉम्प्लीमेंट, कुछ पैसे नहीं लगते हैं, सो गिव इट, ओके, ईगो भी नहीं कम होती है. देन नेक्स्ट थिंग यू डू इज यू कैन स्टार्ट अ शॉर्ट चैट विद समवन इन अ लो प्रेशर सेटिंग, फॉर एग्जाम्पल योर क्लासमेट्स, और इफ यू आर सिटिंग इन अ कैफेटेरिया, इफ यू गो टू कॉलेज एंड यू आर सिटिंग इन अ कैफेटेरिया, और यू आर सिटिंग इन अ कैफेटेरिया एट योर आई डोंट नो ऑफिस. Like if you work in a place like Facebook or Google or something, they have like really amazing fancy cafeterias. Just go sit with someone and maybe just have a conversation. Or just maybe start a conversation with someone that you think is quite inspiring, and you know, you look at them every day and you like them, and just say, hi, what's going on? I see that you're working really hard in the gym. I see that you work out every day. I love that. I love the fact that you're on top of your workout game. Something really simple like that, low pressure. Continuing this conversation after 8:30, we're about to go into a break in about 30 seconds. Lekin is break ke baad jab hum wapas aayenge, then we are going to talk about reading the body language, what you should do and what you should not do. So come back, we will talk some more in just about 15 seconds. Lekin 15 seconds mein jaane se pehle, Flavor Lounge ka weekend buffet hai for 24.99, Saturday, Sunday, 12 PM to 3 PM. Make sure you go try it out this weekend. They have amazing dishes. They're in Frisco.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा,
1: मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
8: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
11: भूख लगी जोरों की
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इन टू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
14: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
15: नेक्स्ट क्वेश्चन।
10: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
15: याद नहीं।
10: बफे में क्या था?
15: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
8: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
16: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट।
17: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
16: मिस क्लिक्स,
18: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
16: कस्टमर्स कितने आए?
19: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
18: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
0: Before we go on to the next segment, jaisa maine aapko promise kiya tha, one little song. This one goes out from Waseem ji to his beautiful wife Farida ji. Aur unhone gana request kiya tha, any song from the movie Silsila. Main kuch dino pehle movie dekh rahi thi, Silsila dekh rahi thi. Kafi lambi hai, that's all I have to say. Par achhi hai, theek hai.

0: पीस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
1: और एंटरटेनमेंट
0: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
4: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 3rd October.
6: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: Shimaru.
1: And friends, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie. मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर और ही रहने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले अभी मेरे को एक कॉल आई शफी जी की. उन्होंने बोला, देखो भाई, तुम सुबह से बारिश बारिश का वो कर रही हो, यहाँ पे तो सलाइना में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है. मैंने बोला, डोंट वरी, कल परसों बारिश होने वाली है. मेरे वेदर ऐप में तो दिखा रहे हैं बारिश होने वाली है, लेकिन अगर बारिश के मौसम में बिजली चली आती है, क्योंकि भाई इंडिया में तो वो हमें हमेशा होता था, कभी भी बारिश का मौसम होता था ना, मतलब बादल गरजते थे और फ्यूज़ वहीं उड़ जाता था. तो अगर वैसा अगर हो गया बाई चांस, लेट्स प्रे नॉट, बट जस्ट इन केस दैट हैपन्स, स्पेशली इफ यू रनिंग अ बिजनेस, देन यू नीड टू रीच आउट टू तारा कमर्शियल, बिकॉज दे ऑफर रियली गुड कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशंस एट अ वेरी कम्पेटिटिव एंड अ वेरी लो प्राइस एंड रिलायबल सर्विस, कस्टमाइज एनर्जी प्लान. सो कॉल 8444282808 और विजिट taraenergy.com टूडे. तो गाइज, हम लोग रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग की बात कर रहे थे, एंड जैसे हम बोल रहे थे कि वॉट आर सम वेज दैट यू नो यू कैन रीड द रूम, बी डायरेक्ट, हैव हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन वगैरह वगैरह. तो वी विल टॉक मोर अबाउट हाउ टू रीड द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्स, द वन यू हैविंग कॉन्वर्सेशन. फर्स्ट, इफ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस बैक एंड दे आर सीमिंगली इंटरेस्टेड इन योर कॉन्वर्सेशन, दे कीप टॉकिंग एंड कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है. अगर सिर्फ वन लाइन में रिस्पॉन्स आता है, यस, ओके, येलो, आई डोंट नो, लाइक समथिंग, जस्ट वन ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू नो क्लियरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड. सो देन मे बी यू शुड ट्राई समवेयर एल्स, एंड दैट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स देयर प्रेरोगेटिव एंड इट्स देयर चॉइस. They don't owe you anything and you tried your luck. That's great. Okay. Number two, short answers ya fir looking in other direction. Short answers jo maine bola ya fir they are looking in another direction. That means they are not interested in you. This especially applies to dates also. Sometimes we push ourselves to sit through dates when the person is really, really not interested. They're on their phone the whole time and the energy doesn't match up. It doesn't even shift. You're sitting there for an hour and this person is just not interested. You wrap up the conversation warmly and walk away. If they are laughing at your jokes or if they are smiling and, you know, seemingly interested, obviously you will continue. Red lights. Sometimes if they say, like, direct answers, like, I'm sorry, I have a boyfriend, obviously you move on. Or I have a girlfriend, not interested. I have a wife, I have children, whatever. Then you know. Okay? I'm just here with my friends. That shows clear disinterest, which means they're not interested in having a conversation with a stranger. They're having a time with their friends and you should let it be. या फिर क्लियर डिसइंटरेस्ट या टर्निंग अवे, मतलब आपसे बात भी नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं यार, बात नहीं किया तो कोई बात नहीं. ओके, दिस इज वेयर यू से नो वरीज, नाइस टू मीट यू एंड एंजॉय योर नाइट, एंड देन यू गो अबाउट योर डे. डोंट फील बैड, डोंट टेक इट पर्सनली, एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन दिस इंटायर गेम, इन दिस इंटायर शो. यू शुड लीव ग्रेसफुली, किसी पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं. वो आपको पर्सनली कोई अटैक नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एंड इट हैज़ प्रॉबली गॉट नथिंग टू डू विथ यू. मे बी इट हैज़ टू डू विथ एवरीथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड, बट यू नो यू वॉक अवे विथ डिग्निटी एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट. दैट मीन्स यू आर द वन, व्हाट यू कॉल इट, यू आर टेकिंग द हाई रोड. येस, दैट्स व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. And if you learn to take no really well, if somebody says no to you, and if you learn to take that no really well without making a personal drama out of it, then you'd be surprised how more warmly people are actually feeling towards you. Aap vishwas nahi karoge, then they are not aggressive towards you or anything. You'll see like an energy shift in the long term also. So guys, ये गाना सुनते हैं. अभी बारिश के गाने हमने बहुत बजा लिए, तो अभी थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं इसको. हम आप या लेट्स जस्ट चेंज इट.

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर।

तो गाइस दिस इज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि 9:52 बज चुका है. सो आई एम जस्ट हियर टू से गुड बाय. आई विल सी यू टुमारो. टुमारो इज माई लास्ट डे दिस वीक टू बी ऑन एयर. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. लेकिन बिफोर आई विल टेल बिफोर आई लीव फॉर टुडे, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट वॉट टू एक्सपेक्ट टुमारो. ओके, टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट क्या बोलते हैं रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल. वी गोना मूव अहेड फ्रॉम देयर. हाउ टू हैव द कॉन्वर्सेशन, दिस इज द सेकेंड हाफ, विच इज हाउ टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग वंस इट हैज स्टार्टेड. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. ओपनिंग लाइन सब लोग बोल देते हैं हाय हाउ आर यू, बिकॉज दैट्स चिल, इट्स रिलैक्स. लेकिन हाउ डू यू कंटिन्यू अ कॉन्वर्सेशन दैट यू नो दैट योर डेट्स और द हैंग्स और यू मीटिंग समवन न्यू दैट एक्चुअली बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड यू नो यू कैन एक्चुअली बिल्ड सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद दिस अदर पर्सन. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट, वॉट काइंड ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. बट कम बैक टुमारो. We will talk about all of these things, how to find the thread, stay with it, या फिर sometimes get comfortable with those awkward silences, because किसी new person से आप मिलोगे awkward silences सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, radio पे भी कई बार हो जाती है when I'm just like now what, it's just like 5 seconds का awkward silence, but when you're in the moment then it feels like a lot. Okay, लेकिन मे बी इट्स एक्चुअली नॉट अ लॉट. सो वेन यू कम बैक टुमारो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आज के लिए बस इतना ही. स्टे ड्राई एंड ड्राइव सेफ इन दिस बारिश का मौसम. और अगर आप ड्राइव सेफ नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपका गाड़ी स्लिप एंड हो जाता है क्योंकि डैलस हाईवेज आर लिटल यू नो नॉट सो सेफ, देन यू नो वट टू डू, यू नीड टू कॉल ओमर ख्वाजा. आज के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू टुमारो. बाय गाइज.

फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात 104।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
7: बिंदास बोलो बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
8: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशिया रेडियो पर

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शो रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फन एशिया रेडियो के साथ।

0: शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाई टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.
1: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो दोपहर फोन पर
2: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
0: शाम को घर पर
3: You are listening to Fun Asia Radio.
0: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो
1: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और visits. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
0: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
1: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales, or related fields, we'd like

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सुबह ड्राइव पे
5: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
6: दोपहर फोन पर
7: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
3: शाम को घर पर
8: You are listening to Fun Asia Radio.
3: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
6: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स वाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
3: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net।
6: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
2: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कॉम्पिटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो Measure calls, bookings, redemptions, and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI. Turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
4: Hey everybody, this is Asim, and you're listening to the rocking music of my film, only on Phanasia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं.

0: आनंद
1: लगे रहो।
2: I love you।
3: आनंद तेरा फोन आया यार।
1: अरे
3: चल चल।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनिश।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Phonesia 104.9 FM.
1: जिद शर्त दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है। मैं ज्योंदी करूंगा हॉकी।

0: शांति होगी बिंदास. ज्वाइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
1: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फनीशा.

0: प्रवीण, व्हाट इज दिस?
1: ये सब क्या है?
0: देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
1: सर। वो
0: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: ले लीजिए, बताइए कहाँ ले चले?
1: PSC हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक जगह।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवी को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: Agar kisi cheez ko dil se chaho
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
11: डील कहाँ?
10: सिंपल पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
11: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है.
12: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji

0: शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
2: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
3: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विथ द मंथ ऑफ अक्टूबर.

0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुस आया था और चिड़ियों को पता न था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: उई माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ, I love you.
0: बिल्कुल झूठ.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
8: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
9: Every home has a story. Let's create yours together.
10: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
11: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
15: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
14: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
15: To solution?
16: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
17: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
0: Thank you very much for joining us this hour of the program, and let's get started with it on this 1st of October. And it was on today's date in the year 331 BC that Alexander the Great of Macedonia defeated Darius III of Persia, spelling the end of the Persian Empire. Annie Besant was born on today's date in 1847 in London. She died in Madras, the British social reformer, sometime Fabian socialist, theosophist and Indian independence leader, had been the wife of an Anglican clergyman. She separated from him and became associated for many years with the atheist and social reformer Charles Bradlow, an early advocate of birth control, and became a prominent Fabian socialist under the influence of George Bernard Shaw. By an act of the U.S. Congress, Yosemite National Park was created, eventually becoming one of the most heavily visited national parks in the country, home of such natural wonders as Half Dome and the giant sequoia trees.

डब्ल्यू में आज है मॉनसून वाली फीलिंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग डी एफ डब्ल्यू, दिस इज रमिता. और अगर आज आपने सुबह कर्टन्स खोले हैं तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है. लो, बारिश बारिश और बारिश. आज पूरा डी एफ डब्ल्यू ऐसा लग रहा है कि टेक्सस ने ओवरनाइट डिसाइड कर लिया है, यार बॉस अक्टूबर बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ी मुंबई वाली मॉनसून फील करा देते हैं सबको. एंड टुडे बीइंग थ्रोबैक थर्सडे, मुझे लगा आज ये दिन है परफेक्ट बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड फॉर मी इट्स रियली फन. अगर आप वो उस कैटेगरी में हो जिनको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ योर हेयर, बिकॉज ऑफ योर यू नो फोन्स, बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स, बिकॉज ऑफ योर शूज, तो आप अगले तीन दिन प्लीज घर पे रहिए. और जिनको अगर बारिश पसंद है तो मुझे सुनते रहो, क्योंकि आप डालस में अगर गाड़ी के अंदर बैठे हो बट बारिश की ये जो खुशबू होती है, विंडशील्ड पर पानी होती है, ये जो काले काले बादल छाए होते हैं, और दिमाग सडनली आपको 20-25 साल पीछे कुछ नोस्टैल्जिया में ले जाती है, जरूर ले जाती है, बहाना मत मारिए. स्कूल के रेनी मॉर्निंग्स होती है, पेपर बोट्स होती है, पकौड़े, चाय, वेट यूनिफॉर्म, स्कूल बस, कॉलेज बंक, टेरिस पे बारिश, पावर कट. आज पूरा थ्रोबैक थर्सडे इज डेडिकेटेड टू बारिश वाली यादें. एंड जैसे कि मेरा ओपनिंग क्वेश्चन रहता है, बचपन में बारिश का मतलब आपके लिए क्या था? लाइक अ रेनी डे स्कूल हॉलीडे, पेपर बोट्स, पकौड़े, या मम्मी की आवाज, यार बारिश में मत भीगो बीमार पड़ जाओगे. आज मेमोरीज भी होगी भीगी भीगी और प्लेलिस्ट भी. बट डी एफ डब्ल्यू रोड्स पे केयरफुल रहना, नॉर्थ टेक्सस फ्लड वॉच में भी है, सो अननेसेसरी हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए. रेडियो लाउड रखिए एंड लेट्स बिगिन दिस रेनी थ्रोबैक थर्सडे ओनली ऑन 104.9 FM फनी शेयर रेडियो. दिस इज रमिता.

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
3: ये last Diwali पहना था, ये नेहा की शादी में। इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
4: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
3: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
4: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
5: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
6: नेक्स्ट क्वेश्चन।
5: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
6: याद नहीं।
5: बफे में क्या था?
6: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
7: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

26 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Rumita and Gupshup Gali. And Gupshup, aaj hai Throwback Thursday ki. Acha, bachpan ki barish ka sabse interesting aur exciting part kya tha aapka? School band hona, that was alag sa excitement. Matlab, subah khulte agar bahar जोरों से बारिश हो रही है तो दिमाग में इंस्टेंटली वही क्वेश्चन आता था कि आज स्कूल तो पॉसिबल है ही नहीं, यूनिफॉर्म नहीं निकालना, होमवर्क की टेंशन नहीं, मेंटली ऑलरेडी एक छुट्टी का दिन स्टार्ट हो जाता है. और इस बचपन वाली फीलिंग को आज भी मेरे कलीग ने यही सवाल पूछा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि इतनी बारिश हो रही है यार, ऑफिस आज भी आना है क्या? मतलब बारिश बार हो रही है, काम आपको ऑफिस को ऑफिस के अंदर करना है, बट ये क्वेश्चन जो बचपन वाली है ना, अभी तक पीछा नहीं छोड़ती. स्कूल की मेमोरीज, बचपन वाली बारिश की यादें कौन सी है, कॉल करके बता ही सकते हो. 9722355555. दिस इज रुमिता ऑन गपशप गली.

0: You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Ramita on her show Gup Shup Gali. And today, as I said, is a rainy day. वो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, but बात उसी के चर्चे की वही हो रही है. मतलब चर्चा वही है कि बाहर बारिश है और हमारे दिमाग और दिल के अंदर कितने सारे मेमोरीज रिगार्डिंग बारिश, उसी की चर्चा में आगे बढ़ेंगे शो को लेके, मगर एक छोटी सी मोटी सी ब्रेक के बाद. Stay tuned, keep listening.
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
2: लैपटॉप में.
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव.
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
3: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. NRI वेल्थ. Don't leave a mess, leave a plan.
5: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
6: कितनी लंबी लिस्ट है?
5: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
6: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
7: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
8: बेटा 95% आए?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Force Finance Council member Anil Grandhi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
6: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
18: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rimita. You know, desi household mein barish aur pakore ka relationship kisne establish kiya, ye to pata nahi. Because apparently, weather forecast kuch bhi ho, bahar halka sa drizzling start hua, ghar mein discussion zarur hota hai. Pakore bana de. Koi discussion majorly nahi. कोई कमेटी भी नहीं, नेशनल पॉलिसी है ये. और हर घर का रेनी डे कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है. कहीं पे चाय पकोड़े, कहीं पे खिचड़ी, कहीं पे भुट्टे, कहीं पे समोसा, कहीं पे वो दो मिनट वाली नूडल्स भी. और समवेयर कुछ ना कुछ मम्मी लोग फ्राई करते रहते हैं. एंड समवेयर पापा लोग बालकनी में चाय लेके वेदर इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं. लाइक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्हीं को रिपोर्ट करता है डायरेक्टली. लाइक उनका वो जो एक्सपर्टीज लाइन होता था ना, लगता है और तेज होगी. थैंक यू पापा द वेदर चैनल. सो टुडे DRW में भी एग्जैक्टली वही वेदर है जहां डाइट का मोटिवेशनल स्पीच थोड़ा सा वीक पड़ सकता है. लेकिन अगर आपको वीकेंड में ग्रैंड खाने का मन है, आई नो टुडे इज जस्ट थर्सडे, बट अगर वीकेंड का प्लान मैं बना ही दू, देन द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज सर्विंग द ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेस. लाइव काउंटर्स भी है, शेफ स्पेशल भी है, एंड फ्रेश फ्लेवर्स. यार फ्लेवर लाउंज है, फ्रेश फ्लेवर तो होगा ही. ऑल दिस फॉर इन सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 12 PM टू 3 PM. यू कैन टेक योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेक योर वीकेंड डिलीशियस एट द फ्लेवर लाउंज विच इज लोकेटेड ऑन द प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. सो गुड फूड एंड ग्रेट मेमोरीज के लिए विजिट फ्लेवर लाउंज.

10:54 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Rumita on show Gupshup Gali. चलिए थोड़ा गपशप को साइड में रखते हैं और आपके फाइनेंसिस के बारे में बात करते हैं. तो आपको अगर पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज चाहिए, एडवाइसेस चाहिए फॉर योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपके रियल एस्टेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और गाइडेंस की अगर जरूरत है, और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, देन माई टाइम इक्विटी led by CPA Sudhir Pai should be your go-to destination, because he, as I said, gives you the personalized strategies which helps you build your future and to better see it this way, your financial future. So, apne financial future ke khate, you can visit mytimeequity.com or call CPA Sudhir Pai at 469-702-1272. That's 469-702-1272. Stay tuned in the Gupshup Gali with me, Rumita. Baki jankari, baki gupshup jo hai, jari rahegi humari in the next hour, because I'll be here till 12:30 only on 104.9 FM, Funisha Radio.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
6: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: That garba was totally worth it. We had so much fun.
13: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
12: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
15: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
16: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
15: Miss Clicks?
17: 100 logon ne click bhi kiya.
15: Customers kitne aaye?
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
20: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

8 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. And Hawaii, nahi, main le jane wali hu aapko because it's time for Bollywood Time Machine. Okay, DFW, ghari ko thoda sa reverse karte because bahar to already perfect setting hai hi, barish hai, grey wale skies hai, you know, bhige bhige roads bhi hai, jahan pe aapko bara maza aa raha hai gaariyan chalane mein. Okay, jokes apart. To Bollywood Time Machine ke liye isse better day aaj ho hi nahi sakta. And mere pyare Bollywood lovers, think about this. Hindi movies mein barish kabhi sirf एक वेदर नहीं है. कभी बारिश में प्यार का इजहार होता है, कभी दिल भी टूटता है, कभी हीरोइन को बहुत जोर से डांस आता है, लाइक वही डांस वाली फीलिंग, और कभी हीरो हीरोइन एक ही अम्ब्रेला के नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लोज आ जाते हैं. एंड व्हाट्स फैसिनेट्स मी अबाउट बॉलीवुड इज कि हर डिकेड में बारिश का एक अलग ही यू नो इंटरप्रिटेशन है. लाइक 50s की बारिश में वो इनोसेंस थी, 70s में इट इज पोएट्री, 90s में तो भाई ग्लैमर की एक अलग ही झलक दिखने को मिली है हमको, 2000s में थोड़े से लार्जर देन लाइफ लाइक चादर हमने थोड़ी ज्यादा फैला दी, एंड फिर बारिश बिकेम मोर प्लेफुल, स्पॉन्टेनियस, ऑलमोस्ट लाइक अ रियल लाइफ. सो आज टाइम मशीन किसी एक ईयर में नहीं रुकेगी, लाइक माई ऑलमोस्ट ऑल द थर्सडेज दैट आई डू. हम डिकेड बाई डिकेड बॉलीवुड की बारिश में ट्रैवल करेंगे, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट वेयर वन अम्ब्रेला बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लाइक आइकॉनिक रोमांटिक इमेजेस वाइल यू आर इन आई मीन वाइल इट्स रेनिंग. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ओजी सॉन्ग ऑफ रेनफॉल. कौन सी? वही थोड़ी पुरानी 1955 वाली.

If you are a Bollywood lover like I am, so just picture this frame. Black and white, Mumbai, Raj Kapoor, Nargis, ek chhata, koi Switzerland nahi, koi designer costume nahi, na hi koi huge choreography, and still one of the most recognizable romantic visuals of Hindi cinema. You're listening to 104.9 FM, Funisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rimita. Actually, Sri 420 ka wo umbrella scene, na, Bollywood romance ka almost एक्चुअली में टेम्पलेट बन गया है. दो लोग, एक छाता, बारिश, बस केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. बट आपको थोड़ा सा फिल्मी नेस से, आपके बॉलीवुड पंती से थोड़ा सा रियलिटी चेक देते हैं आपको. और अगर आपको नौकरी की तलाश है, लाइक और यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लिप और अ चेंज इन योर करेंट पोजिशन, देन आईस्टियर इंक हैज मल्टीपल ओपनिंग्स फॉर द पोजिशन ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर and software developer. It's a full-time job and a 40 hours a week duration. Male or female, anybody can apply. And the job location is primarily in Plano, Texas. You should be and must be authorized to work in the United States. Aapki jo JD hai, yani ki job descriptions ya duties hai, aur sare जानकारी, डिटेल्स जानकारी आपको ऑन रिक्वेस्ट मिल सकती है. फॉर दैट यू नीड टू मेल द रेज्यूमेज टू HR @ आईस्टियर इंक, दैट इज 5717 लेगेसी ड्राइव सूट 250 प्लेनो टेक्सस. दैट मीन्स यू हैव टू ईमेल योर रेज्यूमेज ऑल्सो टू आईस्टियर _HR_US @ iSteer, like ISTEER.com. सो iSteer_HR_US@iSteer, that is ISTEER.com. सुनते रहिए गप शप गली. बारिश वाला टाइम मशीन चल रहा है हमारा, गप शप भी जारी है हमारी.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. Gup Shup is all about the Bollywood and its love for barish rainfall. And as I said, it's the time machine segment we started this conversation with Raj Kapoor and Nargis with their iconic song. चलिए थोड़ा उससे आपको 20 साल आगे ले चलते हैं. फास्ट फॉरवर्ड टू 1979. तब बॉलीवुड नहीं था एक्चुअली. इट वॉज एंड स्टिल इज द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट इट बिकेम कम्प्लीटली डिफरेंट. एक नया सुपरस्टार आ गया है एंड उनका नाम है अमिताभ बच्चन. इस बार कोई एंग्री मैन अवतार में नहीं है वो इस गाने में. ना झगड़ा, ना कुछ ड्रामेटिक, ना कोई ड्रामेटिक डायलॉग. Just Amitabh Bachchan and Moushami Chatterjee walking through the actual rain-soaked Mumbai in the movie Manzil. And that's what make Rimjhim Gire Saavan so beautiful. It almost doesn't feel like they're performing. Wo footpath pe chal rahe, bheeg rahe, hus rahe, ga rahe. And Mumbai itself became the part of their romance. You know, 1955 mein agar chhata, umbrella aapko aur हीरो और हीरोइन को बारिश से बचाया था. 1979 तक हिंदी मूवीज ने कहा कि यार अम्ब्रेला छोड़ो, भीगने दो. एंड ऑनेस्टली टेल मी, आप किस टीम में? प्यार हुआ इकरार हुआ वाले या रिमझिम? यानी आपको बारिश में भीगना पसंद है या फिर यू आर टू कॉन्शियस कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे यार? 9722355555 इज द स्टूडियो नंबर. गपशप करते हैं इस बारे में. तब तक मैं आपको ले चलती हूँ 1970s में.

39 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Rumita Anha Show, Gup Shup Gali. And aapka man kahin bhi bhaag raha ho, main usko kheench ke le jane wali hoon 90s mein. Because chal raha hai hamara Bollywood Time Machine segment. Aur bahar barish ka ye jo mausam hai, ye jo feeling hai, wo to ek hi cheez se justified hoga. Aur wo hai romance, wo bhi 90s ka aur wo bhi barish wali. Because by the time Bollywood reaches 90s, rain romance bilkul badal gaya hai, and I'm talking about one particular song jo ki hai film Mohra se, you know, Akshay Kumar, Raveena Tandon. Bas 90s Bollywood lovers already know exactly which or what visual comes next. This was no longer innocent umbrella romance. Bollywood basically said, yaar barish ko thoda और ग्लैमरस बना देते हैं, येलो सारी बारिश और वो म्यूजिक, एंड सडनली वन सॉन्ग बिकम्स परमानेंटली अटैच्ड टू द रैविशिंग रवीना टंडन. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट बॉलीवुड सॉन्ग. समटाइम्स यू डोंट इवन नीड टू नो द नेम. आई से येलो सारी, रेन और 90s, एंटायर जनरेशन को पता है क्या आने वाला है.

एग्जैक्टली रैविशिंग रवीना टंडन तो नहीं हो सकता, बट अगर अपने ज्वेलरी कलेक्शन को थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेड करना है तो ध्यान से सुनो अभी मैं क्या करने वाली हूँ. यूर लिस्निंग टू 104.9 FM फनी शो रेडियो, दिस इज गपशप गली विथ मी रिमिता. और अगर जैसे कि मैंने कहा, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर अ स्टनिंग हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड्स एंड स्पेशली पोल्कीज विद डिजाइंस जो आपके हर ओकेशंस को मैचअप करे, चाहे वो कोई ग्रैंड वेडिंग हो, चाहे कोई एलिगेंट पार्टी हो, या फिर ऐसे ही आपको अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने का मन हो, एंड बाय योरसेल्फ सम ज्वेलरीज और गिफ्ट योर स्पाउसेस और फ्रेंड्स और पार्टनर्स सम ज्वेलरीज दैट विल मेक दैट पर्सन हैप्पी. सो श्री कृष्ण ज्वेलर्स लोकेटेड इन ऑन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. You can visit there and get a hold of their collections of gold, diamonds and polkis. And certainly a very unique design that will, you know, chaka chan laga deti hai aapke pure look ko. Visit kijiye Sri Krishna Jewelers or call them at 430-231-1111. That's 430-231-1111. Sri Krishna Jewelers on Main Street in Frisco.

नाच तो रहे अजहार बिश्वास जी, आई मीन लिटरली नहीं, मन ही मन में नाच रहे होंगे क्योंकि उनको मिल गया है ये 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम. एंड इफ यू वांट टू आल्सो हैव दीज सर्विसेज डन बाय डक टाइम, यू नीड टू कॉल जीतू पटेल एट 972-877-2500. दैट्स 972-877-2500 for your removal of dust, clogged vents, a better airflow, and to reduce hidden fire hazards by duck time. Filhal, the giveaway answer was as simple as koi bhi Bollywood gana. Hum Bollywood buffs ke liye ye question kya hi tha. But, jaise ki as promised, gana to bajna chahiye. Koi bhi jeete, aap gana enjoy karo. And the right answer is from the movie Koi Mil Gaya.

ये गाना जितना भी प्लेफुल हो क्यों ना हो, बारिश मेमोरीज में रोमांस को हम कंप्लीटली इग्नोर कर ही नहीं सकते. मे बी द फर्स्ट रेन विद समवन वेरी स्पेशल, मे बी योर फर्स्ट क्रश इन द कॉलेज, पहला डेट, लॉन्ग ड्राइव, एक छाता, एंड मे बी योर नाउ हस्बैंड और वाइफ, यू गॉट कॉट इन रेन इयर्स अगो. एंड द फनी थिंग इज, आप जब उस मोमेंट से गुजर रहे थे, आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ. आप तब प्रोबेबली यही सोच रहे होंगे कि यार मेरे जूते खराब हो गए, और सालों बाद आपके जूते आपको याद नहीं है, बट वो इंसान याद है, वो जगह याद है, इनफैक्ट गाना याद है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीलिंग तो याद डेफिनेटली है. एंड दैट्स हाउ मेमोरी वर्क्स. इट काइंड ऑफ डिलीट्स द प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस जो हम तब फेस करते हैं, और हमारे मेमोरीज या इमोशंस को बिल्कुल सुरक्षित रख देता है. सो टेल मी, डू यू हैव वन रेन मेमोरी कनेक्टेड टू someone special? You don't have to tell me the name of the person, especially after yesterday's, wo matlab kuch din pehle jo hum conversation kar rahe the about school crushes. We don't need DFW marriages getting into trouble because of these throwback Thursdays. Bas memory bata do yaar, aur ek gana dedicate kar do barish wali isko. This is Gup Shup Gully with me, Romita, only on 104.9 FM. Funny Share Radio.

23 minutes past 12 o'clock, यानी कि टाइम हो चुका है मेरा टाटा बाय बाय बोलने का. आज का बारिश वाला थ्रोबैक थर्सडे, आई हैव टू रैप अप राइट हियर. रेन सॉन्ग्स, बॉलीवुड मेमोरीज और वही पुरानी बारिश वाली यादें, एवरीथिंग वॉज पुट टुगेदर इन दिस शो टुडे. एंड वेदर चाहे जैसा भी हो, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए. यानी कि अगर आपको भीगने का मन करे, डेफिनेटली गो हैव फन आउटसाइड. बट अगर हेल्थ को थोड़ा सा भी कंसिडर करके आप बीमार खुदा ना खास्ता हो जाए, देन डेफिनेटली देर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल. और मेरे पास ही है, कहाँ जाना है. टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ सर्विंग द कम्युनिटी इज नाउ लोनॉक्सी मेडिकल, जिनका सेकेंड एक लोकेशन है विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. इट इज फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य. और लोनॉक्सी में आपको मिलेगा प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब्स, एक्सरेज, सिटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स. एंड एक मजे की बात बताओ, आप अपने आप को पैम्पर भी कर सकते हो इन द हिमालयन मेड स्पा. और ये सब कुछ पॉसिबल है ऑल अंडर वन रूप. लोनॉक्सी मेडिकल इज ओपन 7 days अ वीक, सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे तक. यू कैन वॉक इन एनी टाइम और आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज रमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज गपशप गली. कल मिलूंगी फिर 10 बजे. टिल देन स्टे सेफ ऑन दोज वेट रोड्स, ड्राइव सेफ एंड विल कैच अप टुमारो.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Groh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Groh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
2: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
2: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 एएम टू 8 पीएम, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को। सुबह ड्राइव पे
8: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
9: दोपहर फोन पर
10: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
5: शाम को घर पर
11: You are listening to Fun Asia Radio.
5: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
9: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
5: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
9: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
12: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
13: Tracks that put you on the right track.
14: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका फन एशिया 104.9 एफएम पे। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और हम फिर से स्टूडियो आ गए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। बाहर का मौसम बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश रुकी ही नहीं है, लगातार हो रही है, और यार बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया है फाइनली। इस बारिश का इंतज़ार हम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और कल मैंने सिर्फ और सिर्फ बारिश वाले गाने प्ले किए हैं इस बारिश के मौसम में। और मैं अभी रास्ते में गाना गुनगुनाते हुए आ रही थी जो मैंने कल प्ले नहीं किया था, तो सोच रही हूँ उससे शो की शुरुआत करते हैं, एंड फिर आपको और प्यारे खूबसूरत गाने सुनाएंगे थोड़ी ही देर में।

That was our very own Chameli, Kareena Kapoor and Sunidhi Chauhan ki awaaz mein tha ye gaana. Bahut zordar barish ho rahi hai yaar aur maza aa raha hai. Coffee pee rahe the to pakode khane ka man kiya, lekin kya kare, banana bhi khud hi padega na. To aaj soch rahe ki wapas jaake chai pakoda ho jaye aur is mausam ka aanand liya jaye. Kal bhi kuch aisa hi kaha tha maine, aaj bhi wahi keh rahi hu, because aaj barish bilkul zor shor pe hai. And बारिश जोर शोर पे तो है, लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं, गाड़ियों में हैं, देन प्लीज़ ड्राइव सेफ, बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही है. मैं अभी आ रही थी एंड देन हाईवे पे थोड़ा सा विजिबिलिटी भी मुझे लग रहा है, जब तेज़ बारिश हो रही है तो दिक्कत हो रही है. सो यू गाइस टेक केयर प्लीज़. इफ़ इट्स रेनिंग वेरी, यू नो, इफ़ इट्स रेनिंग टू मच इन योर साइड, देन प्लीज़ स्टॉप द कार, वेट, थोड़ा बारिश कम हो जाए. ज़रूरत नहीं है तो घर से मत निकलो यार, घर में बैठ के मतलब देखो, बैकयार्ड में बैठो, बारिश का मज़ा लो, इन्जॉय करो और मेरे गाने सुनते रहो. सबसे बड़ी बात है, बहुत सुंदर और प्यारे गाने लाइन अप करके रखे हैं आपके लिए. एंड आई एम टेकिंग योर रिक्वेस्ट टू, सो प्लीज़ यू कैन कॉल इन द स्टूडियो नंबर 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर, और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर.

मेरे ताल से ताल मिलाते रहिए और बने रहिए फनीशा 104.9 FM पे, बिकॉज अगले सेगमेंट में हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। फिलहाल बारिश के गाने सुना रही हूँ यार, रिमिता ने माहौल बना के रखा था तो मैंने सोचा थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं। शी डज अ फैंटेबुलस शो एंड मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ फनीशा पे आप लोगों को। अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलती हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि आपके सपनों का घर आपसे बहुत ही करीब है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज जो है उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज को नेशन वाइड हेल्प किया है पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस के साथ फॉर बाइंग एंड फॉर रीफाइनेंसिंग। तो अगर आप इनसे मदद चाहते हैं तो कॉल करिए 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। अगला गाना है किसका, आमिर खान और नीलम की फिल्म से।

0: So that was Aamir Khan and Neelam in Afsana Pyar Ka. Amit Kumar aur Asha Bhosle ki awaaz mein ye pyara sa gaana. Barish ka mausam. Waise yahan monsoon to hoti nahi hai, par jab bhi barish hoti hai, hum log monsoon ke gaane laga ke baith jate hain. Bollywood mein to pura ka pura ek playlist hai yaar monsoon ke upar, barish ke upar, aur barish ke itne sare pyare khoobsurat gaane bane hain. Lekin is barish ke gaane ke beech mein ek badi hi mazedar si farmaish aayi hai bhaiyo behno, aur wo farmaish hai Baba Sehgal ke gaane ki. To chaliye us gaane ki taraf jaldi se aapko lekar ke chalte hain. Baba Sehgal ki awaaz mein thanda thanda pani. The original rapper of India, 1992 का ये गाना.
1: आप सब मेरे दोस्त, my friends, जब भी किसी five star hotel जाते हैं, या तो खाने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, और या किसी और काम के लिए, जो आप ही बेहतर जानते हैं.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
3: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
4: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
5: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
6: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
5: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो,
11: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
12: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: It's the time to clock out.
17: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
18: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
19: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
18: Miss Clicks?
1: 100 logon ne click bhi kiya.
18: Customers kitne aaye?
7: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
4: Hello and welcome back, and you're listening to your host of on Phanasia 104.9 FM. आपका स्वागत है फिर से, आपके होस्ट आपका यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और हमने कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने आपके लिए लाइन अप करके रखे हुए हैं। तो जल्दी से पहले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ लेकर चलेंगे आपको।

तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये गाना क्यों, क्योंकि भैया मैंने कहा पहला दिन है और पहले दिन पे हम सोच रहे हैं क्यों ना आपको थोड़े से पुराने दिनों में लेकर के जाएं। 1 अक्टूबर है और हर महीने ही पहली तारीख आती है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पहले के जमाने में पहली तारीख के बहुत महत्व होता था। याद है मम्मी कैलेंडर पलटती थी, क्योंकि भैया नए दूध का हिसाब लिखना होता था, स्कूल की फीस कब भरनी है ये मार्क करना होता था, 1 तारीख को तनख्वाह जो हाथ पे आती थी, तो वो एक अलग समय था। आजकल तो सब कुछ फोन में है यार, कैलेंडर का मतलब बहुत ही मुश्किल से कभी जाकर के कैलेंडर का पन्ना पलटते हैं हम। मैं अपने किचन में कैलेंडर जरूर रखती हूँ, मार्क करके रखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट उस दिन है, क्योंकि आई एम विथ ओल्ड स्कूल, मुझे फोन खोल खोल करके देखना पसंद नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत होती है। मैं फटाक से जाती हूँ अपने किचन का कैलेंडर टर्न करती हूँ, सब कुछ मार्क करके लिखा होता है उस पर। लेकिन हाँ, उस समय 1 तारीख का मतलब होता था नया कैलेंडर पे, जो सुबह मम्मी या पापा का कैलेंडर के पास जाके पिछला पन्ना फाड़ते थे और नया महीना ऑफिशियली शुरू हो जाता था। सैलरी आती थी, महीने की पूरी प्लानिंग होती थी। और मुझे याद है एक कैलेंडर आया करता था, उस पर दूध का हिसाब लिखने का ना अलग से जगह होता था हर दिन का। मैं क्लियरली रिमेम्बर कि 1.5 किलो आया, 2 किलो आया, आधा किलो आया, आज नहीं आया, बाहर जाना है, हम लोग आज छुट्टी पे जा रहे हैं इसलिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग यूज टू बी मैंशन। सो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मुझे आज ऐसे ये ख्याल आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये गाना सुनाऊँ, क्योंकि किशोर कुमार का गाना है, मज़ेदार सा है और मैं इसको गुनगुना रही थी। एंड यस, पहली तारीख, तो पहली तारीख का कुछ प्लानिंग करके रखा है आप लोगों ने, या आप भी मेरी तरह ओल्ड स्कूल हैं और आज भी कैलेंडर पे मार्क करते हैं अपनी चीज़ें, बताइएगा ज़रूर मुझे। फिलहाल आपको इस नए गाने की तरफ लेकर के चल रही हूँ जो आज ही रिलीज़ हुआ है। इट्स द ऑफिशियल वीडियो फॉर पुराने दिन, पहला प्यार दूसरी बार, एंड दिस सॉन्ग इज़ इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह।

He was this beautiful track. पुराने दिन याद कर रहे थे, कैलेंडर वाले दिन याद कर रहे थे. और अभी हमारे पास एक कॉल आया कि भाई पहले जब कैलेंडर में एक तारीख आती थी तो बड़ी खुशी होती थी कि हाथ में तनख्वाह आएगी और बहुत कुछ करेंगे. पर अब ये पहली तारीख आती है तो टेंशन होती है. टेंशन क्या होती है यार, सैलरीज देनी पड़ेगी, कहाँ से जुगाड़ेंगे. मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, जैसा मैंने आपको फ़ोन पे कहा कि यू नो आप सैलरीज दे रहे हैं. सो डोंट वरी, अगर आपने इतने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है देन भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे और आपका काम हमेशा बनता रहेगा. बिकॉज किसी और को काम देने से अच्छा क्या हो सकता है. एक नहीं, बहुत सारे घर चल रहे हैं आपके कारण. सो दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू माई कॉलर मिस्टर चेतन जी, जिन्होंने अभी कॉल किया था आपके लिए ये खूबसूरत सा गाना.

Injured in a car, truck or slip and fall incident, focus on healing while attorney Omar Khwaja fights for you. You pay nothing unless he wins. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. चलिए आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं और ये गाना मेरी कॉलर के लिए है और ये उनकी मम्मी के फेवरेट सिंगर ने गाया है. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है. पता है ये रेडियो ऐसी जगह है ना जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया है खुशी के पल गम के पल सब एक साथ मिलके आ जाते हैं. एंड द रेमेडी टू ऑल आई थिंक मतलब आई फील इज़ दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड. बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने बने हैं और इनको प्ले करके किसी की याद में या किसी के लिए डेडिकेट करके हम उस मोमेंट को और स्पेशल बना देते हैं. सो या पीपल कॉल मी एंड शेयर देयर स्पेशल मोमेंट्स. अपनी कुछ बातें बताते हैं जो दिल को छू जाते हैं कहीं ना कहीं और शायद इसी के लिए ये शो करने में बहुत मज़ा आता है मुझे. तो आगे बढ़ते हैं उस गाने की तरफ चलते हैं जिसकी जो डेडिकेटेड है तानिया को. तानिया दिस वन स्पेशली फॉर यू. आपकी मॉम के फेवरेट सिंगर का ये गाना. इस गाने को सुनिए एंड बस जिंदगी ऐसा ही सुहाना सा सफ़र है. चीज़ें ऊपर नीचे होते रहती हैं.

सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, जल्दी से अगले गाने की तरफ चलते हैं. और उसके पहले आपको बता दें कि हमारे पास एक कॉल आई है और हमारे रेगुलर कॉलर है सोहेल जी, आज उनका बर्थडे है. सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड सिर्फ उनका ही बर्थडे नहीं है, यू नो हमारे घर परिवार में ऐसे रिश्ते होते हैं ना जहाँ पे बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, वहाँ पे हमारे साथ में किसी का बर्थडे हो जाए, हमारे जानने वाले का, रिलेटिव का, तो बात ही और बढ़ के ना बहुत अच्छी हो जाती है. सो सोहेल जस्ट टोल्ड मी दैट उनकी सिस्टर इन लॉ सरीन जी के भाई रियाज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उनका भी आज जन्मदिन है. तो आप दोनों को एक साथ हैप्पी बर्थडे कर देते हैं और बहुत अच्छा दिन जाए आप लोगों को. और ये प्यारा सा गाना जो उनकी वाइफ मरियम जी ने उन दोनों के लिए डेडिकेट किया है, वो जल्दी से प्ले कर देते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. और उसके बाद हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे और आकर के प्यारे खूबसूरत और सुंदर गानों का सिलसिला शुरू रखेंगे फनीशा 104.9 FM पर आपकी होस्ट आयुषी के साथ.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
4: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
5: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
6: पान से आठ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कल हिंदी हिंदी बोल।
7: यू नो माई वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट। मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
1: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
6: Phone uthaye, number dabaye.
7: 347-449-4242.
8: Elwing walo, dhyan se suno. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
9: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
12: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
11: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
12: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
13: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338, 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered
15: by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
16: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
17: Zindagi ke kai rang. Funasia Radio ke sang.
18: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 एफएम पे. और आज पिछले आधे घंटे से डेडिकेशन का मौसम चल रहा है. जी हाँ, बारिश के इस मौसम के साथ ना चाय पकौड़ों के साथ बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं. कैलेंडर से लेकर के अपने प्यारे प्यारे लोगों को याद करना सब कुछ कर लिया हमने और अभी तक वो यादें ख़त्म नहीं हुई है. अगले गाने की फरमाइश आ गई है, मैंने लाइन अप करके रखा हुआ है. एंड ये बहुत ही प्यारा सा गाना हमारे कॉलर हैं संजय, वो अपनी मदर के लिए डेडिकेट कर रहे हैं. एंड सिंस उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले अगले तीन दिन तक ना एक त्यौहार है जो कि हमारे साथ मनाया जाता है, मतलब हमारी तरफ बिहार में मनाया, स्पेशली बिहार में. आई डोंट थिंक किसी और स्टेट में त्यौहार मनता है. और ये ठीक तीज और करवा चौथ जैसा होता है, निर्जला उपवास, लेकिन ये बच्चों के लिए किया जाता है. मुझे पता है कि नदन साइड में कई जगह पर होई अष्टमी की जाती है, वैसे ही ये जितिया का व्रत किया जाता है. 24 घंटे तक निर्जला उपवास अपने बच्चों के लिए, अच्छे प्रेयर्स उनकी कामयाबी के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए माएँ करती हैं. इट्स नॉट अ वेरी ईजी वन बिकॉज यहाँ पर तो फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया. इंडिया में इस टाइम पे बहुत ह्यूमिडिटी, गर्मी होती है और उसमें 24 घंटे का उपवास किया जाता है और तरह तरह के पकवान व्यंजन बनते हैं जो कि चढ़ाए जाते हैं और खुद भी खाए जाते हैं. सो द फर्स्ट डे इज़ नहाए खाए वेर इन अ लॉट ऑफ फूड इज़ मेड एंड देन second day is where the fasting happens and the third day is when you open the fast with a lot of variety of food. Pura ekdam, matlab us mausam ka jo bhi khana hai wo sab banaya jata hai, bahut kuch hota hai. Kyunki abhi just Sanjay ne apni mom ko ye pyara sa gana dedicate kiya hai to main soch rahi hu kyun na ye song sari moms ke liye hai jo ki apne bachcho ke hamesha well being aur unke unki chinta karte hue, unka dhyan rakhte hue, unke liye hamesha prarthna karti hain. To all the beautiful moms out there, this beautiful song is for you.

Attention, Texas business owners looking for a smarter commercial energy solution. TrustTara Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates. Reliable service and customized energy plans. Call 844-428-2808. I repeat, it's 844-428-2808 or visit TataEnergy.com. Today, Tara Energy, I'm so sorry, or visit TaraEnergy.com today. लगता है चश्मा लग गया है मेरे इन आँखों को. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. इसकी फरमाइश आई है पंकज जी और पल्लवी जी की तरफ से. सो हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.

ये वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक आशा भोसले की आवाज़ में. और अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको. लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ग्रेट फूड इन प्लेनो, सिग्नेचर क्विजीन हैज़ ऑल द राइट फ्लेवर्स. एंजॉय देयर फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. प्लानिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी और स्पेशल सेलिब्रेशन, दे ऑल्सो ऑफर बैंक्वेट सर्विसेज. विजिट सिग्नेचर क्विजीन एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा इन ईस्ट प्लेनो. Or go to signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving its signature on every taste. इसके साथ एक और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने की तरफ आपको जल्दी से लेकर के चलते हैं.

خطبه

मैंने कहा था एक औरत तबाह करेगी इस कार को, जाओ अपनी आंखों से देख लो। जो साथी थे आज दुश्मन बन चुके हैं, तबाही से पहले उन्हें रोक लो।

0: अली बाबा और 40 चोर का ये गाना, और वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को 104.9 FM फनी शे, आपका अपना फन स्टेशन। और आज आपकी फरमाइश ले रहे हैं, स्टूडियो का नंबर आपको बता रहे हैं 9722355555 है। कॉल करिए, अपने पसंद के गाने प्ले करवाइए, और साथ ही अगले सेगमेंट में मतलब ब्रेक के बाद जब आप वापस आइएगा तो हमारा गिव अवे सेगमेंट होने वाला है, जहां पर आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से एक $10 का गिफ्ट कार्ड। तो तैयार रहिए उसके लिए, कुछ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना प्ले करेंगे और आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे, एंड हूएवर गिव्स द राइट आंसर फर्स्ट गेट्स दिस गिफ्ट कार्ड। ये हर दिन हमारे शो पर होता है, तो भाई अगर इस बार मिस हो जाए तो डिसअपॉइंट मत होइएगा, बिकॉज कल फिर हम इसी टाइम पे अपना गिव अवे सेगमेंट करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आके आपको सुनाते हैं कुछ बहुत प्यारे खूबसूरत गाने, एंड वील डू द गिव अवे एज वेल।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: सुबह ड्राइव पे
9: यूर लिस्निंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
10: दोपहर फोन पर
11: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
12: शाम को घर पर
1: You are listening to Fun Asia Radio.
13: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
14: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
13: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
14: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
15: That garba was totally worth it. We had so much fun.
16: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
15: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
17: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
18: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
19: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
20: अजी सुनते हो?
21: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
17: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Fun Asia Radio.
22: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
19: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
22: When is it?
19: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 AM to 5 PM at Ravi's Import Fort Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
10: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
12: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
20: Don't touch that dial. Keep listening.
0: आपका स्वागत है फिर से एक बार इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. और ब्रेक पे जाने के पहले हमने वादा किया था कि अपना गिव अवे सेगमेंट करेंगे, तो जल्दी से वो करते हैं. स्टूडियो का नंबर फिर से सुन लीजिए, 9972235555 है. और बस एक प्यारा सा 90s का ट्रैक प्ले करने वाली हूँ. आपको फिल्म का नाम बताना है, कॉल करिए और बताइए और लेकर के जाइए फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पर.

भाई हमारे कॉलेज की क्या बात है। मतलब अभी मेन जो ट्यून है ना जिससे गाने पहचानते हैं वो भी नहीं आया, और उसके पहले ही कॉल्स आ गई। एंड आई हैव गॉट द विनर फॉर टुडे, एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पल्लवी ओझा। फिल्म का नाम है सदमा, और सदमा का ये गाना आपके लिए लेकर के आई थी आपकी होस्ट आयुषी। पल्लवी को मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से एक $10 का गिफ्ट कार्ड। फन पिज्जा किचन न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा और अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा, ट्राई फिएस्टा वेजी, फायरी पोलो लोको, सी फूड पैक्ड स्नोर कैमरॉन एंड मोर। आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन and which has already been answered, so you get your gift card. You have to go to the Frisco location to collect your gift card. तो जाइए पल्लवी जी, enjoy करिए पिज्जा from fun पिज्जा किचन। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ 20 मिनट बचे हैं मेरे पास, जल्दी से अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। इस गाने की फरमाइश आई है अमीना जी की तरफ से, और आज कुछ हम 90s 80s के बीच में ही झूलते रह गए हैं, पर बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं।

तो ये था बहुत ही प्यारा सा एक गाना अमिताभ बच्चन की फिल्म से, और इसकी फरमाइश आई थी अमीना जी की तरफ से, टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग. ज़्यादा वक्त नहीं बचा है मेरे पास, सो आई प्ले अ कपल ऑफ सॉन्ग्स जो मेरे पास ऑलरेडी जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है. टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस वेरी ब्यूटिफुल 90s का नंबर इन द वॉइस ऑफ कुमार सानू एंड अलका याग्निक. फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आएगी.

राहुल रॉय की फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का ये प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए लेके आए थे हम। और अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। राहुल रॉय के साथ पूजा भट्ट है इसमें एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी भी बारिश हो ही रही होगी बाहर, मैं बाहर निकलूंगी और फिर से छाता लेकर के हम जाएंगे गाड़ी की तरफ। आप भी अपने अगर गाड़ियों में बैठ रहे हैं तो छाता ले लीजिए, भूलिएगा मत, बिकॉज या इट वॉज रेनिंग हेवली 2 आवर्स बैक एंड आई एम होपिंग द सेम, बिकॉज आज पूरे दिन ऐसे ही बारिश है। पर अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है स्टूडियो से और हमारी प्यारी सुनहरी किरण आएंगी आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेकर के। सो यस गाइज स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू फनीशिया। हमारे जी इस बारिश में, धूप में या फिर बर्फ में भी आकर के यहाँ शोज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी आपने हमारा दिन बनाया, कॉल्स किए, फरमाइश दी, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। सो लीविंग यू विद दिस ब्यूटिफुल बारिश सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ठीक 12:30 बजे, कुछ नया कुछ मज़ेदार लेकर के आएंगे आपके लिए। Till then, signing off. Your host Ayushi, Phanisha 104.9 FM सुन रहे हैं आप।

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
6: दिल की बात किससे कहें?
7: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
8: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
9: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
10: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
9: क्या मतलब?
10: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
9: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
12: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट. वी हैड सो मच फन.
13: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट. Where can we eat now?
12: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
15: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
16: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
17: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

फनेचर रेडियो में आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूँ किरण आपके साथ 2:30 से 5 तक मंडे थ्रू फ्राइडे मेरा और आपका साथ रहता है. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. तो जी आप सुन रहे हैं मेरा और अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन. आज है जी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ और आप जानते हैं फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज वेरी स्पेशल बिकॉज आई ब्रिंग यू फूड जंक्शन 3 से लेके 4:30 तक फूड जंक्शन लेके आऊंगी आपके लिए. उसमें हम क्या बात करेंगे और क्या क्या आपको सुनने को मिलेगा ये थोड़ी देर बाद उसका तस्करा करेंगे. फिलहाल ये जो आधा घंटा है इसे प्ले करते हैं और डेडिकेट करते हैं कुछ रोमांटिक मेलोडीज को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड स्टे कनेक्टेड. आई हैव लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स लाइंड अप फॉर यू.

अगले 20 मिनट आपके लिए कुछ रोमांटिक मेलोडीज एंड देन वी विल एंटर इनटू आवर फूड जंक्शन सेगमेंट. बट बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग आई मस्ट टेल यू, अगर आप सोच रहे हैं यू नो टू मेक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और यू लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं आप, तो फॉर एवरीथिंग माय टाइम इक्विटी are here to help. They are led by CPS Sudhir Pai. Aapko personalized strategies bana ke denge. Aapki, you know, they'll guide you step by step, help you make the best decisions. Give them a call. 469-702-1272. 469-702-1272 is the number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is mytimeequity.com.

अच्छा जी, तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है, आपके लिए बेहतरीन खाना लेकर आता है, जैसे कि बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का, दाल मखनी। मतलब अगर इनमें से कुछ भी आपका खाने का दिल कर रहा है तो फिर तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो। वैसे आप उनका मेन्यू भी चेकआउट कर सकते हैं टू फाइंड आउट वॉट मोर दे आर ऑफरिंग यू, और आप क्या क्या मज़े की चीज़ें खा सकते हैं बाई लॉगिंग ऑन टू तंदूरी फ्लेम TX.com। वंस अगेन दैट वेबसाइट इज तंदूरी फ्लेम TX यानी कि texas.com। और अब तंदूरी फ्लेम जाने का एक और बेहतरीन रीजन मैं आपको देती हूँ, और वो क्या है जी, आपके लिए आ रहा है फ्लेम आवर, यानी कि मंडे थ्रू थर्सडे 5 बजे से 8 बजे शाम, ऑर्डर एनी टू आंट्रेज एंड रिसीव वन कॉम्प्लीमेंट्री एपिटाइजर। सो ये हुई ना जबरदस्त डील। जाइए तंदूरी फ्लेम गार्लैंड में लोकेटेड है, और मंडे थ्रू फ्राइडे, एक्चुअली थर्सडे, आई एम सॉरी, मंडे थ्रू थर्सडे 5 बजे से 8 बजे तक 2 आंट्रेज ऑर्डर कीजिए और 1 एपिटाइजर बिल्कुल फ्री। तंदूरी फ्लेम TX.com इज वेर यू नीड टू लॉग ऑन एंड चेक आउट।

और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है जी, या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अफोर्डेबल प्राइमरी केयर आपको प्रोवाइड की जाएगी पैशन हेल्थ प्राइमरी या पैशन हेल्थ डायरेक्ट के थ्रू. फॉर जस्ट $85 अ मंथ आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं पैशन हेल्थ डायरेक्ट की. दिस मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. और आपको मजीद मालूमात के लिए इस वेबसाइट पे जाना है. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मोर. दैट वेबसाइट इज passionhealthphysicians.com. या फिर आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स. दैट नंबर इज 214-666-6259. वो नंबर है. और आपको ये भी बताऊं जी कि दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, सम एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. और जो स्पेशल बात है वो ये कि अगर आप वीकेंड्स वीकडेज में आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो वीकेंड्स पे फ्रिस्को और अर्विंग की लोकेशन इज ओपन सैटरडेज एंड संडेज टू. गिव देम अ कॉल एंड चेक देम चेक आउट के आपके टाइम के हिसाब से क्या आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है एंड सो मच मोर.

दिल ने दस्तरखान बिछाया। जी हाँ, और एक दस्तरखान हमने भी बिछा लिया है जी। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप, और आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में। आज है फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और आप जानते हैं फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ लेकर आती हूँ आपके लिए फूड जंक्शन। हम फूड जंक्शन में क्या करते हैं जी? बहुत कुछ, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में जाते हैं। फूड जंक्शन पर हम सिर्फ खाना नहीं खाते बल्कि दुनिया को डिस्कवर करते हैं। कभी मैं आपको पेरिस लेके गई, एक दफा मैं आपको सिंगापुर लेके गई, और आज जो है पिछले हफ्ते हम गए थे इस्तांबुल। लेकिन इस्तांबुल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि देयर इज सो मच टू ईट एंड सो मच टू एंजॉय वेयर फूड इज कंसर्न्ड इन इस्तांबुल। तो आज है जी एपिसोड 2 ऑफ इस्तांबुल। सो थोड़ा सा रीकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इस्तांबुल, मतलब इस्तांबुल के बारे में आप सोचिए, टर्की इस्तांबुल, राइट? सो एक तरफ है यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, बीच में बेइंतहा खूबसूरत बॉस्फोरस, और हर तरफ खाना ही खाना, कबाब्स एंड बकलावाज एंड सिमित एंड टर्किश कॉफ़ी एंड टर्किश टी और मेज़े और फ्रेश सी फूड। मतलब ये है कि ऐसी स्मेल जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, एकदम से आपको अपना दीवाना बना देती है, और आप कहते हैं कि जी इस्तांबुल गए, टर्की गए और खाना नहीं खाया, उनका स्पेशलिटी ये नहीं हो सकता। सो उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और उनके स्ट्रीट्स पर क्या क्या मिलता है, ये सब हमने पिछली बार बात की थी। एक क्विक रिकैप मैं आपको देती चलूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इस्तांबुल का खाना, व्हाई इज इस्तांबुल अ फूड पैराडाइज, क्योंकि इस्तांबुल की ज्योग्राफी उसकी कुजीन को स्पेशल बनाती है। मतलब एक सिटी में हैं आप, लेकिन आपको मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस मिलता है, ब्लैक सी इन्फ्लुएंस मिलता है, बाल्कन इन्फ्लुएंस मिलता है, मिडिल ईस्टर्न फ्लेवर्स मिलते हैं, सेंट्रल एशियन फ्लेवर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ ऑटोमन पैलेस की ऑफ कोर्स लेगेसी कुजीन मिलती है। मतलब हर तरह का खाना आपको आम दुनिया के हमारे जैसे लोगों से ले के और रॉयल्टीज तक का खाना मिलता है आपको इस्तांबुल की, और खासतौर पे टर्की बोल लेते हैं, टर्की की सड़कों पे। और डिजर्ट्स के लिए तो आप जानते ही हैं, बकलावा दुनिया का सबसे मशहूर मिडिल ईस्टर्न डिजर्ट में शुमार किया जाता है, और इस्तांबुल के हर रेस्टोरेंट में आपको मिलता है बकलावा। आइकॉनिक सिमित मिलता है आपको, सिमित में जैसे हमने बात की थी कि टर्किश बेगल होता है, लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ बेगल नहीं होता, इस लाइटर होता है, क्रिस्पियर होता है, वेरी डिफरेंट देन द बेगल दैट वी आर यूज्ड टू ईटिंग हेयर इन द यूएस, कम्प्लीटली डिफरेंट। इसके साथ टर्किश ब्रेकफास्ट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, जिसमें हमें डिफरेंट चीजेस मिलते हैं, ऑलिव्स, टोमेटोज, क्यूकम्बर।

बेगल नहीं होता, इस लाइटर होता है, क्रिस्पियर होता है, वेरी डिफरेंट दैट देन द बेगल दैट वी आर यूज टू ईटिंग हेयर इन द यूएस, कंप्लीटली डिफरेंट. इसके साथ टर्किश ब्रेकफास्ट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, जिसमें हमें डिफरेंट चीजेस मिलते हैं, ऑलिव्स, टोमेटोज, क्यूकम्बर्स, और उसी के साथ मेनिमन, जिसको हम कहते हैं एक सिंपल डिश जिसमें एग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, टोमेटोज, ग्रीन पेपर्स, ऑलिव ऑयल, सीजनिंग, और भी बहुत कुछ. सो टर्किश ब्रेकफास्ट से आपने करनी है अपने दिन की शुरुआत. इस गाने के बाद मैं आपको मजीद बताऊंगी. थोड़ा सा रिकैप अभी हमारा चलेगा कि टर्की जाइए तो फिर आपने क्या खाना है.

कुछ बेहतरीन टर्की के और खासतौर पे इस्तांबुल में आपने क्या खाना है, उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं, उसका एक क्विक सा रिकैप आपको देते हैं. अब तक जो पिछले हफ्ते पिछले महीने हम फर्स्ट थर्सडे आपके साथ मौजूद थी, इस्तांबुल की जर्नी में हमने काफी कुछ टेस्ट किया, यानी कि बात करी. सबसे पहले तो उनके सुपर स्टार फूड की, विच इज कबाब, डोनर, सीजन मीट, वर्टिकल स्पिट पर यू नो स्लोली रोस्ट होता है, थिनली स्लाइस किया जाता है, ब्रेड या रैप पे सर्व किया जाता है. इसी के साथ इसके अंदर कबाब का मैंने आपको बताया, डिफरेंट किस्म के कबाब्स का हम डिस्कशन किया था. इसके अंदर कबाब होता है जी स्लाइस मीट, ब्रेड, रिच टोमेटो सॉस, योगर्ट के साथ. अदना कबाब होता है स्मोकी मिंस मीट, जैसे कि हम कीमे के कबाब होते हैं कुछ इस तरह के. उसी के साथ सिस कबाब, जो कि मैरिनेटेड मीट पीसेस होते हैं. और फिर हम गए थे कुछ, हमने बात करी थी टर्किश की बेकरी के बारे में और उसकी बेकरी की स्पेशलिटीज के बारे में, जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं. बोरेक्स से हमारी ये बात शुरू हुई थी, विच इज फ्लेकी क्रिस्पी पेस्ट्री फिल्ड विद चीज एंड पोटेटो एंड स्पिनच या फिर मीट. लोग बहुत उसको जल्दी जल्दी क्विक क्विक खाते हैं और पसंद करते हैं. लाहमकून, ये है जी थिन क्रिस्पी फ्लैट ब्रेड टॉप्ड विद मिंस्ड मीट. इसी के साथ पिद्दे, जो कि टर्किश स्टाइल बोट शेप्ड ब्रेड होती है, वेरी वेरी पॉपुलर. चीज होता है, मीट होता है, एग होता है, या फिर आप उसको टोटल वेजिटेरियन भी बनवा सकते हैं. सो देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर अ वेजिटेरियन, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट इन टर्की. और तो चाहे कबाब्स हों या उनके बेकरी स्पेशल्स हों, इस्तांबुल में हर चीज़ जो है वो स्पेशली क्रिएट की जाती है, क्योंकि खाने पीने की इतनी सारी कल्चर्स मिलके बनते हैं. सो फूड यहाँ पे सिंपल लगता है लेकिन बज़ाहिर होता नहीं, बिकॉज देर इज़ सो मच दैट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स.

और इसी के साथ टर्किश सी फूड की बात पिछले हफ्ते हुई थी, आप पिछले महीने हुई थी आपके साथ, जिसमें हमने बताया था कि जी चूंकि इस्तांबुल इज सराउंडेड बाय वाटर, बॉस्फोरस है, गोल्डन हॉर्न है, सी ऑफ मार्मरा है, तो ऑब्वियसली सी फूड जो है वो इस्तांबुल फूड के कल्चर का बहुत ही मेजर हिस्सा है. और ग्रिल्ड फिश हो उसको बहुत पसंद किया जाता है. एक उनकी डिश है बहुत पॉपुलर, बालिक एकमेक, जिसमें ग्रिल्ड फिश होती है, ब्रेड के साथ वो सर्व की जाती है, onions and greens and lemons, or of course waterfront view. What else do you want? तो अब जो है यहाँ तक हुआ हमारा recap, और अब मैं आपको मजीद बताने वाली हूँ कि टर्की अगर आप जाइए और इस्तांबुल में अगर आप हैं तो आपको क्या खाना है. So let's begin with the next segment, and this is meze. अच्छा meze क्या होता है? This is a selection of small shareable dishes served as appetizers, और full communal meal भी serve की जा सकती है. और ये जी क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि छोटी छोटी डिशेज हैं, बल्कि मगर आप बिल्कुल इससे फूल मत होइए कि स्मॉल है, बिकॉज यू कैन ऑर्डर एज मेनी स्मॉल डिशेज एज यू वांट, और एकदम से यू नो सडनली आपकी इंटायर टेबल भर जाती है. इस मेज़े में आप क्या मतलब बेसिकली जो सबसे पॉपुलर चीजें ऑर्डर होती हैं उनमें हुमस है, एग प्लांट की डिशेस हैं, कैसिक है, डोलमा है, वेरियस सैलड्स हैं, सी फूड प्रेपरेशंस हैं, ऑलिव ऑयल डिशेस हैं. तो इस्तांबुल फूड गाइड जो है वो कॉमनली हाईलाइट करता है मेज़े को, सच एज हुमस, बाबा गनूश, डोलमा एंड कैसिक एज पार्ट ऑफ द सिटीज डाइनिंग कल्चर. अगर आपने कभी ट्रैवल भी किया हो या आप कभी किसी टर्किश रेस्टोरेंट पे गए हो तो आप देखते हैं कि इस तरह की एक प्लेट में ना साथ आपको नान मिल जाता है, और छोटी छोटी छोटी छोटी ये डिशेस होती हैं पड़ी हुई जिसमें आप अपना नान डुबोते हैं या यू नो बना के खाते हैं. दैट इज बेसिकली अ मेज़े प्लैटर जो आपके लिए आता है, एंड दिस इज वेयर टर्किश फूड बिकम्स वेरी सोशल. एक बंदा कुछ ऑर्डर कर देता है कि भाई मुझे हुमस पसंद है, कोई कहता है मुझे बाबा गनूश पसंद है, कोई कहता है मुझे फला वाली योगर्ट पसंद है, तो वो सारे मिलके ये ट्राई, ये छोटी सी, ये छोटा, ये छोटा, तो वो कर करके एक बहुत बड़ा आपके सामने फीस्ट सा आ जाता है छोटी छोटी डिशों का. दिस इज मेज़े. सो अगर आप टर्की जा रहे हैं, यू आर इन इस्तांबुल, डू नॉट फॉरगेट टू ट्राई मेज़े, एंड इट इज कम्प्लीटली वेजिटेरियन. ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होती हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेजिटेरियन फूड.

Funasia Network now brings its media expertise to your social media. Ji haan, ye gaur se suniye ji, with Relative Media, which is R-E-E-L-A-T-I-V-E, Relative Media, from engaging reels and graphics to captions, content distribution, as well as amplification through Funasia's radio, digital, as well as community platforms. Relative Media gives your brand a complete content solution. So, if you have any questions, you can note this number you can ask your questions or you can book your content audit today. And that number is 469-424-3188. 469-424-3188 is the number. This is Relative Media powered by Funasia Network. तो ये तो बात आपको बतानी बहुत जरूरी थी क्योंकि अब मैं बढ़ रही हूँ हमारी बहुत सारी हमने जो लोकल फेवरेट्स ऑफ टर्की हैं उनकी हमने बात की. इस्तांबुल जाएं तो आपको उनको लोकल फेवरेट्स क्या खाने चाहिए, कबाब्स हों या सी फूड डिशेज हों या बेकरी डिशेज हों, तो आप जो या मेजे ऑफकोर्स. लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं मेरे और आपकी कमजोरी पर, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मीठा नहीं पसंद होता, सो मीठे की तरफ, द डिजर्ट्स. इस्तांबुल में डिजर्ट जो है बहुत सीरियस business. It is not a joke. So let's begin with the most popular dessert of Turkey, and that is baklava. Maine, aapne, hum sabne kabhi na kabhi baklava zarur khaya hai. Layers of delicate pastries and pistachios hote hain, walnuts hote hain, sweet syrup hota hai, crispy, rich, buttery, sweet, matlab kya kuch nahi hota. It is so difficult to define the experience of eating a good baklava. Aur jo good baklava hota hai usko rich filling uski jo hai wo depend karta hai. Kuch logon ko rich filling wala baklava pasand hai, kuch ko sirf nuts wala baklava pasand hota hai, kuch ko halki si drizzle वाला बकलावा पसंद होता है. सो बकलावा इज इस्तांबुल्स सिग्नेचर स्वीट एंड इज कॉमनली ऑफ कोर्स पेयर्ड विद टर्किश टी. तो आप जाइए जरूर, टर्किश टी अगर आपके लिए थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी स्ट्रांग भी हो सकती है वो, तो यू कैन पेयर इट विद अ कप ऑफ कॉफी एज वेल. बकलावा तो बकलावा है. इसके साथ एक और डिजर्ट जो कि टर्की में, इस्तांबुल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, दैट इज कुन्नाफा. ये जी एक बहुत ही मज़े की डिश होती है. श्रेडेड पेस्ट्री होती है इसमें, चीज़ की लेयर होती है, स्वीट सिरप के साथ इसे सर्व किया जाता है एब्सोल्युटली हॉट. और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है क्रिस्पी गूवी स्वीट, ये होता है एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन. कुनाफा जो है वो मुझे पर्सनली कुनाफा बकलावा से भी ज़्यादा पसंद है. आई जस्ट लव द गूवी चूवी स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. और जब वो इतना हॉट सिरप के साथ आता है तो आ जाता है मज़ा. इस गाने के साथ जब हम वापस आएंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक गिव अवे और उसी के साथ एक बहुत मज़े की मज़ीद बात. अभी हमारा डिज़र्ट का सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ.

0: और बकलावा और कुनाफे के साथ, जो कि हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी खाते हैं और आपको कई रेस्टोरेंट्स में मिलता भी है, कुछ और चीज़ें हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं इफ़ यू आर इन टर्की एज देयर डिज़र्ट सेक्शन, एंड दैट इज़ द अदर वन इज़ लोकम. ये है जी टर्किश डिलाइट, सॉफ्ट चुई एंड फ्लेवर्ड विद रोज. पिस्ताशियो होता है इसमें, अनार का फ्लेवर होता है, सिट्रस होता है, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें मिक्स किए जा सकते हैं. सो लोकम, डू नॉट ट्राई, फॉरगेट टू ट्राई that. Isi ke saath sutlak, ye hai ji something lighter. Turkish rice pudding, creamy, comforting or perfect after a heavy meal. Aapne kai baar agar aapne yahan kabhi Turkish buffet khaya hai ya Turkish jagahon pe khaya hai to aapko sutlak zarur nazar aayi hogi. Isi ke saath lokma, ek aur unki bahut hi popular aur flavorful dish hai. This is small fried dough pieces. Jaise ki aap keh lijiye gol chote donuts keh sakte hain. तो ये फ्राइड डो पीसेस होते हैं जिनको सिरप के साथ फिनिश किया जाता है. दे आर वेरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, दे आर वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, एंड ऑफ कोर्स स्वीट ऑल अराउंड. तो ये था द डिजर्ट, द लोकल डिजर्ट फेवरेट्स ऑफ टर्की, जो आप जब जाइए तो आपको जरूर खाने हैं, खाने के साथ सेवरी चीजों के साथ. और ये सब कुछ जो है, दिस इज वेजिटेरियन फ्रेंडली, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर द माई वेजिटेरियन लिसनर्स एंड लवर्स. अच्छा जी, अब जब हम इस ब्रेक से वापस आएंगे, वी हेडिंग ऑन टू अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे बात करूंगी द लेजेंडरी टर्किश कॉफी और टर्किश टी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा पी भी जाती है, जगह जगह आपको दुकानें भी देखने को मिल रही हैं. डालस में भी बहुत सारी टर्किश टी और कॉफी की दुकानें हैं. सो आई टेल यू मोर अबाउट द टर्किश टी एंड कॉफी व्हेन यू आर देयर इन इस्तांबुल. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.
1: कहां गया, कहां रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहां है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
5: कीमा पराठा.
6: मम्मी ऑमलेट पराठा.
7: बेटी हलवा पूरी और तरकारी.
4: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
3: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा. चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो. वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड. विजिट सिग्नेचर क्विजीन डॉट.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
13: It's the time to clock out.
11: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM. ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
14: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
15: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
5: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
15: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
16: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
17: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
18: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 PM to 7 PM for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.
19: Jud jao apni dharti se. Desiyon ka sachcha radio channel. Phonasia 104.9 FM.
20: Ochanati kuri, ochanati kuri.

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

104.9 FM Fun Asia Radio पे आप ट्यून्ड इन हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में फूड जंक्शन सुन रहे हैं. फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ फूड जंक्शन स्पेशल लेकर आती हूँ आपके लिए. इस्तांबुल की बात हो रही है और बहुत सारे हमने खाने पीनों की उनकी बात कर ली. नाउ वी आर मूविंग टू देयर ड्रिंक डिलाइट जिसे हम कहते हैं टर्किश टी एज वेल एज टर्किश कॉफी. सबसे पहले टर्किश कॉफी की बात करते हैं. टर्किश कॉफी सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, जैसे मेरे और आपके लिए चाय चाय एक बेवरेज नहीं है. इट्स लाइक ए सोशल थिंग. चाय कोई भी हमारा इवेंट हो तो हम कहते हैं चाय बना लें, चाय पी लें, चाय चाय चाय. तो इन लोगों के लिए भी टर्की में भी कॉफी इज लाइक ट्रेडिशन. फाइनली ग्राउंड कॉफी, पानी, शुगर ऑफकोर्स, स्लोली कुक्ड इन अ पॉट और फिर आपको एक छोटे से कप में सर्व की जाती है. अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. टर्किश कॉफी कल्चर एंड ट्रेडिशन वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को's रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2013. यूनेस्को ने डिस्क्राइब किया टर्किश के कॉफी कल्चर को एज अ सोशल ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडशिप एंड कॉन्वर्सेशन. वैसे ये हमारे साथ नाइंसाफी है क्योंकि हमारे लिए भी हमारी जो चाय का कप है वो ऐसा ही है. इट इज लाइक अ ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडशिप एंड कॉन्वर्सेशन एंड जस्ट नॉट इवन एनीथिंग, डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड हैविंग अ कप ऑफ आवर चाय. बहरहाल अभी बात हो रही है टर्किश कॉफी की, तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ टर्किश कॉफी को लेकर. और वो ये कि जब हम अपनी कॉफी कप की ख़त्म कर लेते हैं तो कुछ ग्राउंड में जो है वो ग्राउंड्स रिमेन रह जाते हैं कप के बॉटम में. और वैसे तो यूजुअली हमें मैटर नहीं करता, लेकिन टर्की में ये मैटर करता है बिकॉज पीपल मे यूज दोज ग्राउंड्स फ्रॉम योर कप फॉर फॉर्चून टेलिंग. तो मतलब अभी सोचिए आपके कप में कॉफी खत्म हुई तो आपने कॉफी का कप उल्टा किया तो उसमें से कुछ बीज निकले या जो कुछ भी गिरा और उसमें से कोई वहां बैठा है और आपको कहता है कि जी ये तो मतलब मैं आपका फॉर्चून बता सकता हूँ. अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन दिस इज अ ट्रेडिशन दैट दे फॉलो एज वेल. और इसी के साथ टर्किश कॉफी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर. ऑल्दो मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे थोड़ी सी वो स्ट्रांग लगती है टर्किश कॉफी, बट यू नो इट्स वेरी पॉपुलर. इसके साथ टर्किश टी इज एक्चुअली व्हाट आई रियली लाइक. टर्किश टी जो है वो थोड़ी सी माइल्ड अगर बनी हो तो बहुत ही ज्यादा मजे की होती है और इट इज जस्ट मिल्क विल्क नहीं डालते वो लोग टी में. अभी नहीं हमारी तरह दूध पत्ती नहीं बनाते. इट इज जस्ट टी चाय जो कि ट्रेडिशनली सर्व की जाती है बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप शेप्ड ग्लासेस में और उसको भी बहुत मेजर पार्ट ऑफ देयर हॉस्पिटैलिटी माना जाता है. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो टर्की जाइए और दो बड़े बड़े बाजार विजिट ना करें, ये नहीं हो सकता. स्पाइस बाजार एंड ग्रैंड बाजार. वापस आइए गाने से तो मैं आपको बताती हूँ कुछ स्पाइस बाजार और ग्रैंड बाजार की कहानी.

सोचा था कि आपसे स्पाइस बाजार और ग्रैंड बाजार की बात करूंगी, लेकिन अभी कुछ मेजर खाने पीने की बातें बाकी हैं, तो पहले हम वो बात करते हैं, उसके बाद आपको लेके जाऊंगी स्पाइस और ग्रैंड बाजार पे। तो जी अभी बात करते हैं फूड नेबरहुड्स की। अगर आप इस्तांबुल जा रहे हैं, अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ आप इस्तांबुल में मत रहिए, अपने जो डिफरेंट और नेबरहुड्स हैं जो इस्तांबुल के इर्द गिर्द के इलाके हैं, उन्हें जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा फॉर ग्रेट क्वालिटी फूड। जैसे कि इन इलाकों में मैं आपको चंद एक नाम बताती हूँ। इमिनोनू, ये है जी EMINONU। यहाँ पे मिलेंगी आपको बेहतरीन, ये किन चीज़ों के लिए ये इलाके जाने जाते हैं, बेहतरीन फिश सैंडविचेस। यहाँ पे मिलेंगी आपको ज़बरदस्त मार्केट्स, कॉफ़ी, स्पाइसेस और स्ट्रीट फूड की भरमार। तो जरूर विजिट कीजिए, इफ यू आर गोइंग देयर यू माइट फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ही जगह का खाना अगर आप चार पांच दिन जा रहे हैं तो इट कैन गेट लिटिल बोरिंग और अपसेटिंग, तो यू कैन चेंज द लोकेशन एंड द सीनरी। इसी के साथ कैराकोय, ये बहुत मशहूर है एक जगह, दिस इज कंसिडर्ड अ बिग फूड नेबरहुड, कैफेज एंड बेकरीज एंड मॉडर्न रेस्टोरेंट्स और ब्यूटिफुल वाटर फ्रंट वाइब्स के साथ। इसी के साथ कैदिकोय, ये है जी एक और बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है इस एरिया की, क्रॉस ओवर टू द एशियन साइड इसको कहते हैं, आप एशियन साइड की तरफ चले जाते हैं, मार्केट्स मिलेंगी, लोकल रेस्टोरेंट्स, कैफेज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड दैट यू शुड विजिट इफ यू आर अ फूड लवर इज बालात। कलरफुल स्ट्रीट्स हैं, ओल्ड इस्तांबुल एनवायरमेंट है और स्मॉल छोटे छोटे कैफेज हैं, हिडन फूड स्पॉट्स आपको यहां पर बहुत मिलेंगे। जो रिव्यूज लिखते हैं लोग उसमें बालात की काफी बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपको यहां खाना मिलेगा बल्कि वो वाइब, वो फील, वो लुक मिलेगी ओल्ड इस्तांबुल की। इसी के साथ बेसिकतास, यहां भी मिलेगा आपको बेहतरीन नाश्ता, कैफेज, स्ट्रीट फूड्स, यूथफुल एनर्जी, एंड दैट्स ऑफ कोर्स द ब्यूटी ऑफ इस्तांबुल। You don't just visit a restaurant, you explore a neighborhood. और ना ये सिर्फ इस्तांबुल के लिए ही ट्रू नहीं है, कोई भी ऐसी बड़ा शहर जिसके पास बहुत इस्तांबुल जैसी हिस्ट्री है, चाहे आप रोम चले जाइए या चाहे आप एथेंस चले जाइए, वहाँ सिर्फ खाना पीना नहीं होता या आप खाना खाने जाते हैं, तो वो उसके साथ आता है एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चर जो आपको हर बाइट में फील हो रहा होता है। सो दीज आर द पॉपुलर नेबरहुड्स ऑफ इस्तांबुल, जिसमें आपको खाने पीने के लिए और जस्ट टू चेक आउट देयर वाइब जरूर जाना चाहिए। अब जब इस गाने के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको लेके जाऊंगी, भाई जाहिर सी बात है अभी उनके लोकल फेवरेट्स हो गए, डिजर्ट्स हो गई, फूड नेबरहुड्स हो गए, अब बात करनी है देसी फ्लेवर्स की, क्योंकि देसी जहां भी जाएगा उसे एक बार तो देसी खाना खाना ही है।

और इसी के साथ बात करते हैं हमारे देसी फ्लेवर्स की, कुछ देसी गारों की. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कभी भी हम कहीं वेकेशन पे रह जाएं, सब कुछ दुनिया जहान का अच्छा खा के दिल करता है कि कोई बिरयानी की प्लेट मिल जाए, या कुछ यू नो इफ़ यू आर अ डोसा लवर तो कुछ डोसा मिलते, कुछ डिफरेंट मिल जाए. तो इस्तांबुल में आप हैं, सामने बॉस्फोरस है, टर्किश कॉफ़ी है, डोनर है, बकलावा है, लेकिन फिर भी अचानक क्रेविंग हुई नान, कढ़ाई, बिरयानी, बटर चिकन, चाय, डोसा और ये सब कुछ मसाले वाला खाने की. तो गुड न्यूज़ दे रही हूँ आपको कि इस्तांबुल में इंडियन, पाकिस्तानी और साउथ एशियन फूड के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. तो स्पेशली एक आपको एरिया बताती हूँ, तकसीम और बेयोगलू, इस एरिया के इर्द गिर्द आपको काफी सारे देसी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. तो अगर आप पाकिस्तानी फूड मिस कर रहे हैं, इंडियन फूड मिस कर रहे हैं, तो फिर चंद रिकमेंडेशंस आपको दी जा सकती हैं, जैसे कि लेट्स फोकस टू इंडियन फ्लेवर्स. अगर आप मिस कर रहे हैं तो इंडिया गेट है, इंडियन रेस्टोरेंट तकसीम में के एरिया में ये लोकेटेड है, जहां पे आपको इंडो पाक स्टाइल डिशेज मिलेंगी, करीज एंड बिरयानीज एंड ब्रेड्स एंड चाय. इसी के साथ दिल्ली दरबार इज वेरी पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट जो कि तकसीम के एरिया में है एक बार फिर. और अगर आप सुल्तानमत में के या उसके इर्द गिर्द के एरिया में है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियाज ऑफ इस्तांबुल है, बिकॉज यहां पे ही आपको इर्द गिर्द में हाया सोफिया मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो फिर बिरयानी प्लेस इज द प्लेस फॉर यू टू गो. यहां पे मिलेगी आपको जबरदस्त बिरयानी और साथ ही साथ कम्फर्ट फूड. कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की रिकमेंडेशन, अली बाबा कैफे जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये भी तकसीम में अवेलेबल है. नौशे जहां ये जो है पाकिस्तानी इंडियन देसी रेस्टोरेंट, ये भी तकसीम, सेंट्रल तकसीम के एरिया में अवेलेबल है. और जो है बेसिकली हमने एक ट्रेंड सा जो इस सारे में हम देख रहे हैं कि एक खास एरिया है जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त देसी फ्लेवर्स मिलने वाले हैं. लेकिन मेरी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि अगर आप इस्तांबुल जा रहे हैं तो पहले टर्किश फूड ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए टर्की की लवाजमात को प्रॉपरली. डोनर को ट्राई करें, अदना कबाब ट्राई करें, मेज़े ट्राई करें. डोनर अगर आप मीट नहीं खाते तो मेज़े ट्राई करें, बकलावा उनका ट्राई करें, मतलब समथिंग. वेजिटेरियंस में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं. पहले उनके लोकल फ्लेवर्स, जैसे कि हम हमेशा फूड जंक्शन में करते हैं, ऑलवेज टेल यू अबाउट द लोकल फ्लेवर्स फर्स्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट दैट कंट्री और दैट सिटी और टाउन इज नोन फॉर. और अगर आप 4 से 5 दिन के बाद वाकई खाना चाहते हैं तो जरूर अपने देसी फ्लेवर्स भी ट्राई करें. और ये था आपके लिए एक क्विक सा देसी फ्लेवर्स का रिकैप. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बजट फूड इस्तांबुल में क्या हो सकता है, क्विक सा उसका भी कवरेज करेंगे.

बजट फूड इन इस्तांबुल, जब हम ट्रैवल करते हैं हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैन वी ईट वेल वेयर एवर वी आर गोइंग विदाउट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून. ऑफ कोर्स टाइट बजट पे होते हैं, ट्रैवलिंग की कॉस्ट, होटलिंग की, होटल्स की कॉस्ट, फ्लाइटों की कॉस्ट. सो यस, व्हेन यू आर इन इस्तांबुल यू कैन डेफिनेटली ईट ऑन अ बजट. और समटाइम्स द सिंपलेस्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं. सिमित, स्ट्रीट कॉर्न, रोस्टेड चेस्टनट्स, लहमकून, डोना, बोरिक, पिलाव, लेंटल सूप, टी, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको आराम से स्ट्रीट फूड में अवेलेबल होंगी और ये इनके स्ट्रीट स्टेपल्स हैं और इनको आप खा सकते हैं. इवन चिकन राइस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द सिटीज स्ट्रीट फूड कल्चर. और ये बिल्कुल जो है ना इंपॉर्टेंट बात, जो हम अब इतना ट्रैवल जब हम करते हैं तो देखते हैं कि समटाइम्स वी कैन नॉट जज अ प्लेस बाई हाउ फैंसी इट लुक्स. समटाइम्स अ टाइनी नेबरहुड रेस्टोरेंट जिसमें शायद 6-8 टेबलें लगी हों, वहाँ पर हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो कि हमें सालों तक याद रहता है. तो इस का जरूर ध्यान रखिए कि जहां भी जाइए थोड़ा सा रिव्यूज पढ़ लीजिए, थोड़ा लोकल्स के फेवरेट्स देख लीजिए ताकि आपको पता हो कि जहां आप खाने जा रहे हैं. और वैसे एक और मैंने इंटरेस्टिंग बात देखी है कि जो जगह अच्छा खाना देती है वहां आपको लामहाला रश मिलेगा. रश के बजाय बगैर वो जगह होती नहीं, लोग बैठे ही होते हैं, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं उस छोटी सी जगह पे. तो जी, एक दो क्विक फैक्ट्स के साथ हम इस गाने की तरफ जाएंगे, फिर जब वापस आएंगे तो मैं स्पाइस बाजार और ग्रैंड बाजार की बात करूंगी, बिकॉज आई ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल दी फूड स्पेशलिटीज ऑफ टर्की इस्तांबुल एक्चुअली. तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं कि सिमित हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इस्तांबुल. एन ऑफिशियल इस्तांबुल सोर्स ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ सिमित बैक टू 1593. तो अभी 1593 में अगर उसके बारे में तस्करा किया गया है कहीं पे तो आई एम श्योर कि वो उसकी हिस्ट्री उससे भी पुरानी होगी. इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, टर्किश कॉफी कल्चर जो है वो यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया था 2013 में टर्की के लिए. मुझे लगता है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए भी होना चाहिए. और आपको एक और मजे की बात बताती हूँ कि इस्तांबुल्स स्ट्रीट फूड ट्रेडिशन इंक्लूड्स सिमित एंड चेस्टनट, जैसे भी आपको बताया, चिकन राइस, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होती हैं. टर्किश ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है. इट इज़ कॉल्ड कहवालती एंड इज ट्रेडिशनली अ स्प्रेड ऑफ मेनी स्मॉल सेवरी एंड स्वीट आइटम्स रादर देन वन सिंगल डिश. तो टर्की जाइए तो थोड़ा टाइम टर्किश ब्रेकफास्ट पे ज़रूर लगाइए. और जो इस्तांबुल की हमारी cuisine hai that combines Turkish cuisine and Ottoman palace legacy cuisine and culinary traditions of communities and idhar ka Europe aur udhar ka Asia, matlab kya kuch nahi hai jo mujhe lagta hai blend hua hai Turkey ki cuisine mein. With that we are heading on to this beautiful song.

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण में मैं किरण आपके साथ मौजूद हूँ. आज है जी first Thursday of the month and we have Food Junction Special. इस्तांबुल का सफर कर रहे हैं हम. हम बहुत सारी बातें इस्तांबुल के बारे में कर चुके हैं, खाने पीने की, what are their local favorites, उनके desserts में favorites क्या हैं, देसी favorites वहाँ पे आपको कहाँ मिलेंगे, साथ ही साथ उनके neighborhood कौन से हैं जहाँ आपको अच्छा खाना मिलेगा एंड सो मच मोर. लेकिन इस्तांबुल की बात खत्म नहीं होगी जब तक कि इन दो बड़े बाजार्स का नाम नहीं लिया जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद स्पाइस बाजार. और स्ट्रीट फूड हो और डिजर्ट्स की बात हो, ये सब तो हो गई. अब बात करते हैं इस शॉपिंग के कल्चर की या स्पाइस बाजार की, जिसको टर्की में कहा जाता है मिसीर कारसीसी. अब इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट रॉन्ग तो प्लीज मैं माजरत करती हूँ पहले से. तो बिलीव मी, ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, इट्स अ सेंसरी एक्सपीरियंस. आप जैसे ही मार्केट में कदम रखते हैं, एंटर करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको फील होती है वो है अरोमा. आपको एक तरफ से रोस्टेड नट्स की खुशबू आ रही होती है, दूसरी तरफ से फ्रेशली ग्राउंड कॉफ़ी की खुशबू आ रही होती है, कहीं सिनेमन की खुशबू है, कहीं क्लोव्स की खुशबू है यानी कि लौंगों की खुशबू है, कहीं ड्राइड मिंट्स, कहीं पे जो है टर्किश डिलाइट्स का वार्म स्वीट अरोमा. मतलब लिटरली आप पूरे इस्तांबुल को स्पाइस बाजार में स्मेल कर सकते हैं. अब मतलब इमेजिन कीजिए, आप मार्केट के एक नैरो से आइल में वॉक कर रहे हैं, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं. एक शॉप के बाहर रेड चिली फ्लेक्स का माउंटेन खड़ा है, तो दूसरे पे येलो सैफरन, तो कहीं पे ग्रीन पिस्टाशियोज, तो कहीं पे रोस्टेड आलमंड्स, ब्राउन रोस्टेड आलमंड्स, तो कहीं पे गोल्डन ड्राइड एप्रिकॉट्स, तो कहीं पे डार्क रंग के डेट्स, कहीं पे ऑरेंज ड्राई फ्रूट्स, मतलब और कहीं पे कलरफुल टर्किश डिलाइट. तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी रंग बिरंगे बाजार में फिर रहे हैं जहां कलर्स ही कलर्स हैं और दिल करता है हर चीज ही ट्राई.

कहीं पे कलरफुल टर्किश डिलाइट, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी रंग बिरंगे बाजार में फिर रहे हैं जहां कलर्स ही कलर्स हैं और दिल करता है हर चीज ही ट्राई करने का. तो सबसे पहली चीज जो आप स्पाइस बाजार जाके नोटिस कीजिएगा वो है रंग, हर तरह का रंग जो स्पाइसेस की खासियत है. उसके साथ आपको स्पाइस बाजार में जो सबसे मजीद चीज आप नोटिस करेंगे वो है टर्किश कॉफी. आपके सामने जो है कई सारी टर्किश कॉफीज के ग्राउंड टर्किश कॉफी पड़ी होगी जहां से आप उसे फ्रेशली खरीद सकते हैं. फाइन ग्राइंड होगी या कहीं पे जिस तरह कभी पाउडर जैसा, ये जो कॉफी होती है टर्किश कॉफी, ये पाउडर जैसी होती है और वहां पे कॉफी जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर भी हो रही होती है, तो उसका अरोमा भी उठ रहा होता है, आपको पता लग रहा होता है कि कैसी स्मेल आएगी अगर आपने ये वाले बीज खरीदे या वो जो ग्राउंड कॉफी आप खरीदिएगा वहां से, और आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद दैट. इसके साथ एक और चीज जो स्पाइस बाजार में आपको खास दिखेगी वो है टर्किश डिलाइट लोकम. तो ये जो टर्किश डिलाइट है, रोज एंड पिस्टैशियोज एंड अनार एंड लेमन एंड ऑरेंज और साथ ही साथ अखरोट और मिंट, ये इतने सारे फ्लेवर्स हैं. और सबसे जो डेंजरस बात है कि आपको इन सबके सैम्पल्स मिलेंगे वहां पे. सो एक पीस टेस्ट किया, फिर दूसरा पीस टेस्ट किया, फिर तीसरा पीस टेस्ट किया, और करते करते जो है वो आपकी शॉपिंग भी हो रही है. कोई चीज़ आपको पसंद आई, आपने ये भी ले ली, वो भी ले ली, थोड़ी सी ये ले ली, थोड़ी सी वो ले ली, या फिर टेस्ट ही करते करते आपका पेट भर गया. और यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, यहाँ मिलेंगे आपको नट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स और साथ ही साथ पिस्टैशियोज. बहुत कुछ नट्स में भी यहाँ पे अवेलेबल है जो हम अपने प्यारों के लिए वापस भी ला सकते हैं. अगर आपको कोई फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देना है तो स्पाइस बाजार कैन बी एन अमेजिंग प्लेस टू शॉप फॉर टर्किश कॉफीज और दीज ड्राइड नट्स या फिर पिस्टैशियोज और उसी के साथ स्पाइसेस. ऑफ कोर्स इसे स्पाइस बाजार कहा जाता है तो ये तो हो नहीं सकता कि यहां पे स्पाइसेस ना हो. तो जी स्पाइसेस की जब हम बात करते हैं तो रेड पेपर फ्लेक्स, पेपरिका, क्यूमन, ब्लैक पेपर, सिनेमन, ड्राइड मिंट, क्लोव, सेफ्रॉन, और एक फ्लेवर जो टर्किश फूड लवर्स को सबसे ज्यादा पसंद है वो है सुमैक. ये है जी इसका क्या फ्लेवर होता है, टैंगी लेमन फ्लेवर टर्किश डिश होती है ये, जो कि एक्स्ट्रा किक के साथ उसके अंदर एक्स्ट्रा किक सी ऐड हो जाती है और अमेजिंग फ्लेवर बनता है सुमैक का. जाइए तो ज़रूर सुमैक का कोई फ्लेवर और वो ट्राई कीजिए. इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे टी और हर्ब्स आपको और भी ज़्यादा किस तरह से मिल सकते हैं. वी आर स्टिल इन स्पाइस बाजार. आफ्टर स्पाइस बाजार वी विल कवर द ग्रैंड बाजार.

पेरेंट्स के लिए, ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए लेके जाते हैं और आप उनको ये सुविनियर्स देते हैं. तो ना सिर्फ वो सुविनियर जा रहा होता है बल्कि एक बेहतरीन मेमोरी आप उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं. टीज एंड हर्ब्स जो हैं, अगर आप चाय लवर हैं किसी भी किस्म के, तो स्पाइस बाजार से बेहतर जगह आपको टीज एंड हर्ब्स के लिए नहीं मिलेगी. चाहे वो ब्लैक टी हो, चाहे आप हर्बल टीज पसंद करते हैं, चाहे आप फ्रूट टीज पसंद करते हैं, मुझे फ्रूट टीज बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे आप एप्पल रोज मिंट टी पसंद करते हैं, हर तरह की टीज जो हैं ब्यूटिफुल जार्स में, ड्राइड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस. तो कुछ तो कभी कभी ब्लेंड देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये चाय है कि पॉटपूरी है, ऐसा मतलब जाके सजा लो अपने ड्राइंग रूम में, इस तरह की फील आती है. बट वार्निंग, आप यहाँ से एम्प्टी हैंडेड नहीं निकल सकते. कुछ ना कुछ तो बंदे का लेने का दिल कर ही जाता है, इतनी खूबसूरती और इतनी खुशबू और इतने स्पाइसेस वहाँ पे हैं. तो ज़रूर सोचिए अगले सुविनियर्स के लिए आप स्पाइस बाजार से क्या लेके जाएंगे. और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे, और ये गिव अवे है जी आया आपके लिए फन पिज्जा किचन की तरफ से. फन पिज्जा किचन, आप नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है, funpizzakitchen.com, दिस इज अ प्लेस जहां आप उनका जाके पूरा एक्सटेंसिव मेन्यू चेकआउट कर सकते हैं. वो क्या क्या पिज्जाज ऑफर करते हैं, पास्ताज क्या ऑफर करते हैं और क्या है. और अब तो फन पिज्जा किचन ने मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप भी शुरू कर दिया है, जो कि वो आप कह रहे हैं ना मैक्सिकन फियास्टा है. बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, वेजीज एंड पोयो लोकोज एंड सी फूड पिज्जा, हर तरह का विद अ मैक्सिकन ट्विस्ट. सो डू चेक आउट funpizzakitchen.com एंड सी. अच्छा, अब ये जो $10 का गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं, अगर आप जीत गए तो आपको फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन पे जाके अपने इस कार्ड को कलेक्ट करना है. इसको ध्यान में रखिएगा, सो दैट यू नो कि यू हैव अ ड्राइविंग दैट यू हैव टू डू टिल फ्रिस्को. फन पिज्जा किचन फ्रिस्को से लेना है आपको. अच्छा, ये जो हमने स्पाइस बाजार की बात करी आपके साथ, अगर आपके पास कोई स्पाइस बाजार की या कोई टर्की की मेमोरी है, या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि अगर आप फर्ज करो गए स्पाइस बाजार, तो आप वहां से क्या खरीदेंगे अपने प्यारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए. आपने कोई सुविनियर खरीदना है तो क्या खरीदिएगा? चाय खरीदेंगे, कॉफी खरीदेंगे, स्पाइसेस खरीदेंगे, पिस्ताशियो खरीदेंगे, लोकम खरीदेंगे, या फिर कुछ और, या फिर बहुत सारा सभी कुछ खरीद लेंगे. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

और सुवेनियर्स लेने जाना है आपने. वैसे मैं आपको बताऊं कि स्पाइस बाजार से लोग बहुत सारे सुवेनियर्स खरीदते हैं, बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट सुवेनियर्स आर नॉट मैग्नेट्स या की चेन्स या पोस्ट कार्ड्स, दे आर फ्लेवर्स. थोड़ा सा सैफ्रॉन, अ पैकेट ऑफ टर्किश कॉफी, या फिर कुछ पिस्ताशियोज, अ बॉक्स ऑफ लोकम. और जब आप इसे घर जाके खोलते हैं, या फिर आप अपने किसी दोस्त के लिए, प्यारों के लिए, अपने

जी हाँ, कुछ ऐसा ही समाट इस्तांबुल जाके भी होता है। जब हम टूरिस्ट बन के जाते हैं तो सारा दिन सारी रात जो है रौनक सी लगी रहती है चारों तरफ। और आपसे सवाल पूछा था फन पिज्जा किचन की तरफ से, ये $10 का गिफ्ट कार्ड लेके आई थी, यू विल हैव टू गो एंड पिक इट अप फ्रॉम फन पिज्जा किचन लोकेटेड इन फ्रिस्को। और आपसे पूछा था कि अगर आप स्पाइस बाजार जाएंगे तो सुवेनियर्स के तौर पर क्या खरीदिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। जो हमारी बाजी मारी, जिसने सबसे ज्यादा आंसर्स मिले वो टर्किश टी और टर्किश कॉफी की मिले, चाहे वो फ्रूट टी हो चाहे वो डिफरेंट टीज हो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल सोफिया की आई, जिन्होंने हमें बताया कि सेलप इज व्हाट शी विल प्रॉबली बाय देयर। इट इज अ ट्रेडिशनल स्वीट एंड क्रीमी हॉट मिल्क ड्रिंक, बहुत पॉपुलर है टर्की और मिडल ईस्ट में। और ट्रेडिशनली जो है इट इज थिकेंड विद फ्लावर मेड फ्रॉम ग्राउंड वाइल्ड ऑर्किड ट्यूबर्स। तो इसीलिए वो जो ऑर्किड का फ्लेवर है इसके अंदर बड़ा ही वाजे है। तो मैंने इसको अपनी लिस्ट पे डाल लिया है सोफिया, थैंक यू सो मच। और हमारी लकी विनर, आपका नंबर सारे डल गए हैं मैथ के फॉर्मुलेज में जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं। और आज की हमारी लकी विनर हैं सोफिया शेख। सोफिया कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 का गिफ्ट कार्ड। दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर फन पिज्जा किचन पे पहुंचाने का, देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द फ्रिस्को लोकेशन एंड अवेल योर गिफ्ट कार्ड। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। इस गाने के साथ जल्दी से वापस कर आके वी आर गोइंग टू रैप अप आवर सेगमेंट विद द सम डिटेल्स ऑफ ग्रैंड बाजार।

डिजाइन तू करे ब्लो बाकी करे शाइन तू करे ग्लो जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: जी हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सोफिया। एक अपडेट आपको इसमें ये देनी है कि $10 का आपको गिफ्ट कार्ड नहीं जी, वहां जाइएगा आप, कुछ स्पेंड कीजिएगा तो उसमें से आपको $10 ऑफ मिलेगा। संदीप, आपकी फोन कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग अस विद अ फ्यू थिंग्स। और अब जी, इट इज ऑलमोस्ट टाइम टू रैप अप आवर फूड जंक्शन सेगमेंट स्टार्टिंग। वी आर गोइंग टू एंड इट विद ग्रैंड बाजार। ये खास तौर पर इसको शॉपिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस्तांबुल जाइए तो ग्रैंड बाजार, लेजेंडरी ग्रैंड बाजार से होके आना, मतलब जैसे जरूरी होता है ना किसी चीज को हाथ लगाना, वैसे आपको ग्रैंड बाजार को हाथ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे आपको मिलेंगे टर्किश लैंप्स और साथ ही नजर बकूचू, जो कि वो टर्किश ब्लू आई होती है, हर तरह की कारपेट्स एंड सिरेमिक्स मिलेंगे, और साथ ही साथ बारगेनिंग की ऑप्शंस आपके पास हैं। दे लव टू बारगेन। वैसे हमारी एक कॉलर ने हमें फोन किया और उन्होंने हमें बताया कि ग्रैंड बाजार के साथ आप इजिप्शियन बाजार भी जा सकते हैं, जो कि आपको प्रॉबेबली वही चीज आधे दाम पे मिल जाएगी। चीज वही होगी, दाम different hoga, kyunki grand bazaar is very touristy, so it can get quite expensive. With that, it is a time for our wrap with this segment. I will see you after the break.
1: Heere moti main na chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo, kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving, diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो। अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
8: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
9: That garba was totally worth it. We had so much fun.
10: I lost so much of calories today and I'm starving, but it's so late. Where can we eat now?
9: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
11: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
12: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
17: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
16: Kaise?
17: Page 3 eatery?
16: No, not another restaurant again.
17: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
16: Matlab great food, great drinks, एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
18: पेज थ्री ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट.
9: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
10: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
9: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
10: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
5: सुबह ड्राइव पे
19: यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो.
20: दोपहर फोन पर
21: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो.
5: शाम को घर पर
22: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
5: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर, तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो.
10: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच एआई टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स. अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू.
5: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net.
10: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
23: कितने आदमी थे?
24: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

104.9 FM Fun Asia Radio में अभी 5 बजे तक मेरा और आपका साथ बाकी है. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran सुन रहे हैं आप. What an absolutely beautiful show we had of Istanbul. Istanbul को कर दिया है हमने रैप और जर्नी हमारी खत्म हो गई है. शॉपिंग हो के खाना हो के डिजर्ट्स हो के कॉफीज हो के टीज हो, इस्तांबुल इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड. और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट्स. आपने मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनपुट्स दी, बताया कि वहां और कहां शॉपिंग हो सकती है. जो लोग इस्तांबुल गए हैं उनकी इनसाइट डेफिनेटली बहुत मैटर करती है. सो इफ यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप टू इस्तांबुल, डू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. और इसके अलावा आप स्टूडियो में फोन करके और भी मजीद बात कर सकते हैं. और साथ ही साथ गूगल रिव्यूज या वैसे रिव्यूज जरूर पढ़ के जाइए कहीं भी आप जा रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च बिफोर यू गो एनीवेयर. खासतौर पर जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है जो आपको अपने पास रखना चाहिए. अच्छा जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बताती चलूं कि PMJ Jewels अब फ्रिस्को में खुला है. दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. आप आइए PMJ Jewels पे और एक्सप्लोर कीजिए. ब्यूटिफुल गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, ब्राइडल कलेक्शंस हैं उनके पास बेहतरीन. और साथ ही साथ एवरीडे सेलिब्रेशन, मतलब रेगुलर ज्वेलरी, आपको आम चाहिए कुछ भी. सो विजिट PM Jewels, दे लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को. सो एक और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देते चलें कि जो न्यूयॉर्क फैशन वीक जो है वो आ रहा है. सो डिस्कवर द चोजन PMJ Jewels न्यूयॉर्क फैशन वीक 2026 कलेक्शन एट PMJ Dallas ऑन अक्टूबर 3rd. तो 3rd अक्टूबर को वो सारी कलेक्शन आपके लिए PMJ Dallas की लोकेशन पे अवेलेबल होगी. एक्सपीरियंस कीजिए, आई एन एक्सपीरियंस एक्सक्विजिट ज्वेलरी दैट ब्रिंग्स रनवे ग्लैमर टू योर वर्ल्ड. यू डोंट वांट टू मिस दैट.

और इसी के साथ करेंसी अपडेट देने लगी हूँ आपको कि यूएस डॉलर आज कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो जी, अकॉर्डिंग टू xrates.com, यूरो राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 0.88, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.75 पे स्टैंड कर रहा है. इंडियन रुपी 96.17 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि कनेडियन डॉलर 1.42 पे स्टैंड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 277.16 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर. नेपालीज रुपी 153.94, जबकि बांग्लादेशी टका 123.01. बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US dollar. After this music break, I will bring you the gold price update.

गोल्ड प्राइस अपडेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी. अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग इस वक्त गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,177.30, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $134.03. कल की निस्बत वन ग्राम सोने की कीमत में 69 सेंट्स का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $21.57 का इजाफा हुआ. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here with Sunehri Kiran. इस गाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं. वापस आकर मिलेगी आपको ट्रैफिक अपडेट, रोड्स पे क्या चल रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंचने की जल्दी है, मौसम नासाज है, तो प्लीज ड्राइव केयरफुली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विजिलेंट, स्पेशली व्हेन द वेदर इज सो अनप्रेडिक्टेबल.

ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं लेने लगी हूं आपसे विदा. देयर इज एन इंसिडेंट दैट आई कैन सी ऑन IH-20 टुवर्ड्स स्पर 408 नॉर्थ बाउंड रैंप, जिसकी वजह से 3 लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज एक्सट्रीमली हाई एंड बल्कि एक्चुअली क्रिटिकल सेवेरिटी रखा हुआ है. तो प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस स्पॉट. देयर इज इन अ कंस्ट्रक्शन दैट वी कैन सी ऑन IH-35 टुवर्ड्स लूप 288 नॉर्थ, जो जिसकी वजह से एक लेन विच इज एन एग्जिट लेन is blocked. But that's pretty much all that I can see where traffic is concerned, especially in this weather. This is good news ke kuch khas major abhi is waqt roads pe hame nazar nahi aa raha. To isi ke saath ji, kal hai juma aur aap jante hain Fridays are always dedicated to kids. 3 PM till 4:30 is kids junction. 2:30 se main aapke sath connect hungi. We will start with some mix spot, kuch naye aur purane gaanon ka guldasta aapke liye lekar aati hu. Phir hum kids junction karte hain aur phir hoti hai chill party, jahan mere sath aap hi mein se एक प्यारा सा बच्चा कनेक्ट करता है और मेरे साथ करता है शो को होस्ट. सो बने रहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस विद एक छोटी सी बात, दैट वी डोंट ऑलवेज हैव टू अग्री विद वन अनदर, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर. दैट इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू टुडे. और इसी के साथ मिलती हूँ आपसे कल. हैव अ लवली एंड सेफ रेस्ट ऑफ योर इवनिंग.

And listeners, aap sabka bahut bahut swagat hai right here on the airwaves of Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host Paul Bhatia, sitting in today for Marvin Das, apna bindas yaar, Marvin Das. So I'm just sitting in for him today, aur is वेदर में मैं आपको क्या बोलूँ, ऐसा मतलब तौबा वाला वेदर है सुबह से, लेकिन मच नीडेड, राइट? वी नीडेड द रेन, वी नीडेड दिस रिस्पाइट फ्रॉम दिस रियली रियली थ्री मंथ लॉन्ग विंड समर. और वो समर भी ऐसी रही कि थ्री डिजिट्स में चले टेम्परेचर्स, और उसके बाद गुड न्यूज़ आई तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के. खूब बारिश हो रही है सुबह से, टेक्सन्स आर गोइंग क्रेजी. They are saying, oh, look, actual water is falling from the sky. It's been like that kind of a situation. Isi baat pe chalo thodi der mein gaana play karungi about rain. Lekin abhi to bas toba toba ka mood ho raha hai. Itna pyara sa gaana hai. Aur gaane mein itna maze se Vicky Kaushal dance kar rahe hai. And this is a Karan Aujla song, which did absolutely amazing. The moves are so beautiful. With that, I'm going to start and kick off the show right here with Toba Toba for all you lovely Dallas listeners.

हुस्न तेरा तौबा तौबा, ये गाना ही इतना कूल है जिसमें तृप्ति दिमरी हैं और उन्होंने काफ़ी जलवा अपना फैलाया है। और अभी एक न्यूयॉर्क के लिसनर का कॉल आया है जिन्होंने बताया मुझे कि जब वो न्यूयॉर्क में थे, जब स्पेशली विंटर टाइम में सन तो दिखता ही नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी कि महीनों तक जब दिखा नहीं तो किसी ने सुना किसी और को बोलते हुए, ये एक दिन निकला सन तो उन्होंने बोला, अरे ये क्या है आसमान में, ये पीला पीला ये क्या नज़र आया, क्या उभरा है। आई थॉट दैट वाज सो फनी। और ये सच बात है कि कहीं कहीं जहां सन नहीं उभरता नहीं निकलता वहां तो काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट डिप्रेशन हो जाता है, लाइक प्लेसेस लाइक सियाटल फॉर दैट मैटर, इवन यूके जहाँ बहुत बारिश होती है। तो भाई हमें तो इस वक्त बारिश की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इंतज़ार था इतना कि हम बस जैसे ही ये पर्टिकुलर मूड हुआ कि ये गाना, ये बस दिमाग में आ गया मेरे गाना, क्योंकि ये गाना ही ऐसा है। कुछ ऐसे गाने हैं जो कि कभी भी पुराने नहीं होते हैं। पुराने गानों की बात करूं तो भीगी भीगी रातों में आंधी का जो गाना है, या एक लड़की भीगी भागी सी चलती का नाम गाड़ी का जो गाना है, या श्री 420 का प्यार हुआ इकरार हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स मंजिल का रिमझिम गिरे सावन, वो सारे गाने तो हैं ही टाइमलेस। लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं जो कि बॉलीवुड में अभी जो लेटेस्ट भी नहीं है, येट दे हैव अ सर्टन करिश्मा अबाउट दो दैट सॉन्ग, दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। एंड शायद आप पहचान गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। अगर नहीं पहचाने तो मे बी हो सकता है कि आपके लिए कोई और गाना हो बारिश से रिलेटेड दैट यू लव, एंड इफ दैट्स द केस यू कैन सर्टनली गिव मी अ कॉल एंड टेल मी कि भाई पारुल प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, आई लव टू हियर इट। तो दिस इज़ द वन आई लव टू हियर, आई एम गोना शेयर इट विद यू इन जस्ट अ मिनट। इससे पहले मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं कि एक गिव अवे आने वाला है बिरिस्ता की तरफ से, एंड ऑल्सो दिस ग्रेट न्यूज़ दैट इफ़ यू आर बाइंग सेलिंग और प्लानिंग योर नेक्स्ट मूव देन लुक नो फर्दर, कनेक्ट विद आर वेरी ओन नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी, विद मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। नवनीता इज कमिटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूदर, because every home has a story and she will create yours together. For more information call Namnita and her number is 347-449-4242. Once again, 347-449-4242.

0: moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
6: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
5: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
6: To solution?
1: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
10: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
11: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
10: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
12: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: एंड वेलकम बैक लिसनर्स. बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैं जब अनाउंसमेंट करने वाली थी तो ब्रेक आ गया. मैं बता दूं आपको लिसनर्स दैट इफ यू आर ऑन एन H-1B, F-1, L-1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize exclusively in immigration law, including EB-5 investor visas, as well as family and employment visas, perm labor certification, and U.S. citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, you should email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com, the law offices of Seema Mehta. Ab next gana ek request pe aaya hai, aur ye bhi bahut special request, I'll have to say that. Wo kyun? Kyunki Maryam ke husband Suhail ka birthday hai aaj, aur she wants to play this ultra romantic song for him. Aur ho bhi kyun na, ye gana hi aisa hai ki hamesha isme ek baat hai, ek romance hai that a couple should have. और ये गाना आपको डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रोमांटिक मूड में लेके डेफिनेटली आएगा. साथ साथ इसके बाद एक गिव अवे भी आने वाला है लिसनर्स. आई विल हैव अ क्विज फॉर यू अबाउट अ फिल्म बट नॉट फॉर दिस वन. दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट टू सुहेल फ्रॉम मरियम. हैप्पी बर्थडे सुहेल.

0: गाना लिसनर्स, रोमांटिक गाना, बहुत ही क्यूट सा गाना जिसकी धुन हमेशा हमारे, जिसे कहते हैं ना, जिसमें हमारे दिमाग में छा सी जाती है, डोंट यू थिंक. और ये जो मैं नेक्स्ट गाना आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ उससे रिलेटेड है ये क्विज. और क्विज में ये है कि लिसनर्स, लेट मी टेल यू आपको क्या मिलने वाला है. फ्रिस्को, गेट रेडी फॉर अ रॉयल फीस्ट. द पॉपुलर बिरिस्ता हाउस फ्रॉम डेंटन इज नाउ इन फ्रिस्को बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. जी हाँ, राइट देयर. एंजॉय ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलिशियस डिजर्ट्स एंड मोर. ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू 6377 Custer Road, Frisco, Texas, and make it a feast to remember. Answer today's question correctly for a chance to win $20 gift coupon for dine-in only. One winner will be selected, and आपसे फिर मैं आपका नाम लूंगी, फोन नंबर लूंगी और ईमेल लूंगी. और साथ साथ ये क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि ये जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ ये कौन सी फिल्म से लिया गया है और इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है. बहुत ही सिंपल सा सवाल है वैसे देखा जाए तो. और बस एक और इसमें मैं आपसे एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो ये कि म्यूज़िक किसने दिया है. सो नेम ऑफ द फिल्म, हीरो हीरोइन, एंड देन ऑल्सो नेम ऑफ द नेम ऑफ द म्यूज़िक जिसने दिया है. यू डोंट हैव टू टेल मी नेम ऑफ द सिंगर्स, ठीक है. तो ये आपको $20 का कूपन मिलने वाला है बिरिस्ता से. और गाना है कुछ ऐसा नहीं, पूरा ही गाना मैं प्ले कर देती हूँ आप लोगों के लिए. हियर इट इज. Enjoy on this lovely day when the rain is making us want to sing. Studio is 972-235-5555. Fun Asia Radio, you already have the answer? Hello, you already have the answer?
1: Yeah, the hero heroine is Arjun Kapoor, Shraddha Kapoor.
0: Yes.
1: Singer, and music director, Pritam? No, it's not Pritam.
0: What's the name of the movie? Movie ka naam pata hai?
1: This is based off novel and some novel by.
0: Try again. Okay. Thank you. Fun Asia Radio, you're live on air. Who's this? Well, I would need all the information. Yani ki ye gana jo hai itna pyara sa barish ke upar, ye kaun si film se liya hai, isme hero heroine kaun hai, aur things like that, you know. Hero heroine ke saath saath main aap logon se ye bhi puch rahi hu ki iska music kisne diya hai. जो सिंगर्स हैं इसके वो बता देती हूँ कि बिल्कुल ही हटके हैं, यानी कि जो हमारे, हमने इतने शायद इनका नाम होगा आई एम श्योर, लेकिन जैसे हम एकदम पहचान जाते हैं ना कितने सिंगर्स होते हैं, शायद वैसे नहीं हैं ये. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया इसको. मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, ये फिल्म कौन सी है और इसमें म्यूज़िक किसने दिया है.

0: All right, listen, thank you so much for participating. And ye giveaway chala gaya hai. Ek aur bahut hi pyara sa gana aapke liye main play karne wali hu. Wo bhi barish se related hai. If you have a song that you want to hear, you can certainly give me a call. We getting a call. Let's see. Hello, you're on air. Who's this? Hi, Phanisha Radio, you're on air. Okay, yeah, we do have a winner. And ye jo next gana hai, bahut hi cool hai ye gana bhi. Kyunki gaane hi kuch aise hain, lekin Birista ka giveaway ke saath saath aur kuch bhi main jankari aap.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Yaar, festival season aa raha hai aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
4: Kitni लंबी लिस्ट है.
3: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
4: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
5: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
4: Begum, mohabbat apni jagah, lekin Birista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
13: Aakhir kya hai is biryani mein?
4: Dam mein narmi, masalon mein jadu aur har niwale mein nawabi swaad.
14: Presenting Birista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts, and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
15: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
16: Dad, property papers kahan hai?
17: Laptop mein.
16: Investment?
17: Google Drive.
16: Insurance? Passwords?
17: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
16: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
15: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
18: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
15: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
19: That garba was totally worth it. We had so much fun.
20: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
19: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
20: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
21: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
22: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
21: Kya matlab?
22: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
21: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
22: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
21: Ab to karna hi padega, madam.
23: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
24: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net. No.
0: And yeah, listeners, welcome to Fun Asia Radio. And now we have time for interview. Hello, Mr. Aman, are you on air?
25: Yes, Oora aur Aman ki taraf se namaskar. So, dosto, aaj mahine ka pehla din hai. To pehla din mubarak. Lekin is pehle din se ek cheez aap jaan lijiye ki wo galti jo pichle mahine ya usse pichle mahine ya saal bhar se aap karte aaye hain ki credit card ki minimum payment bharte ja rahe hain, lekin क्रेडिट कार्ड है कि हिलने का नाम ही नहीं दे रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा सच में उतर जाए, ना सिर्फ उतर जाए रादर माफी हो जाए, तो उससे बेटर डील क्या हो सकती है। तो जस्ट हमें कॉल कीजिए, हम आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, चाहे वो पर्सनल हों, बिजनेस के हों, स्टोर के कार्ड्स हों, उन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बना दी जाएगी और उसमें से आधा कर्जा माफ हो जाएगा। और ना सिर्फ आधा कर्जा माफ हो जाएगा, जो बाकी आधा बचेगा उसकी भी इंटरेस्ट फ्री किस्तें बन जाएंगी। इसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आप मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं पर्सनल लोन की, जैसे कि घर का रेनोवेशन के लिए लोन लिया हो सकता है, या फिर यूरोप का टूर लगाया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी तक वो यूरोप का टूर तो फेसबुक पे अपलोड हो गया लेकिन लोन उतरा नहीं है, तो उसको भी आप माफ करवा सकते हैं। या गाड़ी जो रिपोजेस हो गई या टोटल हो गई, ऐसे केस में भी अगर आप चाहते हैं कि सेटलमेंट करा ली जाए तो आपका कर्जा माफ हो जाएगा। जस्ट गिव अस अ कॉल। लेकिन एक बार मिनिमम पेमेंट देने से पहले कॉल कीजिएगा। मिनिमम पेमेंट देने से पहले कॉल करेंगे तो आधा कर्जा माफ हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम पेमेंट आपकी वेस्ट होने वाली है। तो उसको बचाने के लिए कॉल मी 1-888-888-9914। कॉल ऊरा 1-888-888-9914। या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे भी बात कर सकते हैं। कॉल मी 9167763555 अगेन 9167763555। और हमारी वेबसाइट है www.oora.org। तो आगे मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल करेंगे तो इस महीने आप वो गलती से बच जाएंगे जो पिछले महीने की थी, और क्रेडिट कार्ड का कर्जा भी माफ हो जाएगा। दिस इज अ गुड डील।
0: इट रियली डज साउंड लाइक एन अमेजिंग डील अमन जी। एंड आपका वंस अगेन, आपका वेबसाइट है oora.com, oora.org। एंड आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9167763555, या एक और नंबर है 1-888-888-9914। एनी लास्ट मिनट मैसेज फॉर आवर लिसनर्स?
25: That's the message. Please, इस महीने की जो मिनिमम पेमेंट की स्टेटमेंट आएगी, एक बार उसको खोलकर पढ़िएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। उसके ऊपर लिखा होगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट पे करेंगे तो आपकी ये पेमेंट 32 से आगे 45 साल तक पे ऑफ होगी, और इसके अलावा अगर आप एक उनकी बताई हुई अमाउंट पे करेंगे तो भी 25 से 30 साल कहीं नहीं गए। तो अगर आप मिनिमम पेमेंट के जंजाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कॉल ऊरा, और अगर नंबर ना भी लिख पाए हों तो कॉल FM रेडियो और Fun Asia रेडियो, और साथ ही उनसे हमारा नंबर लीजिए और अच्छे से गाने की फरमाइश भी कीजिए।
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अमन जी।
25: थैंक यू।
0: एंड लिसनर्स, एक से बढ़कर एक गाने जो आपके लिए आ रहे हैं, वो बरसात के ऊपर जो गाने हैं वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये बात भी पक्की है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, डोंट यू थिंक, वो क्या है आप बताइए, वो क्या है? वो है हेल्थ। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, वो है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। डॉक्टर शेरिल चमाथिल, a board certified family medicine physician from Passion Health, is now available Saturdays from 9 a.m. to 1 p.m. so you don't have to miss work for a doctor's visit. Saturday ko aap ja sakte hain, whether it's a checkup, preventative care or weight management, get the care you need on your schedule. Aur address note kariye, Irving mein hai ye, 230 O'Connor Ridge Boulevard, suite 110, Irving 75038, and the number to call is 214-666-6259. Also, their Irving and Frisco location is open on Saturdays and Sundays too. With that, listeners, जो बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए वेट कर रहा है, मैं फटाफट उसे प्ले करती हूँ, उसके बाद कुछ और बातें होंगी।

जी हाँ, अरिजीत सिंह की आवाज में आप लोग सुन रहे थे बहुत ही कूल सा गाना. What do you think? ये गाना था गब्बर इज बैक से, और इसमें थे अक्षय कुमार, उनके साथ थी करीना कपूर. बहुत ही हैपनिंग सा गाना. और एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है प्रवीण की तरफ से. ही वांटेड टू हियर अनदर सॉन्ग जिसमें है सोनाली बेंद्रे एंड अक्षय खन्ना. तो जहाँ पिक्चर्स की बात हो रही है, फिल्म्स की बात हो रही है, लेट मी टेल यू अबाउट अ फिल्म. इज कॉल्ड आचार्य. डैलस फोर्ट वर्थ, लिसन अप. अ पावर पैक्ड एक्शन फिल्म हैज अराइव्ड एट अ थिएटर नियर यू. आचार्य स्टारिंग नेपाल्स superstar Nikhil Upreti alongside popular Bollywood actors. This action film brings you a story set along the India-Nepal border with action that takes it to the next level. And here's what makes it even more special. The film is in Hindi and Nepali with English subtitles. So bring your family and friends and enjoy it together. Our Nepali friends have watched and loved Hindi movies for years. Now it's our turn. Let's show a Nepali film that same love and support. Acharya is now showing at Cinemark Hearst at Northeast Mall and Cinepolis Ulis. Book your tickets on Findango or visit 7seas.film. Once again, 7seas.film. Acharya, now in your city, don't miss it. With that, here is the song requested by Praveen.

0: कितना प्यारा प्लेजेंट गाना था अक्षय खन्ना उनके साथ सोनाली बेंद्रे और हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ में। फिल्म थी दहक 1999 की फिल्म मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स। वाह, उनका नाम भी सुन के कितने उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मिलन। चलिए लिसनर्स, और भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, अगर आपके पास भी कोई गाना हो जो कि आप सुनना चाहते हैं बारिश से रिलेटेड, देन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। इनफैक्ट एक और गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि वेदर इतना कूल सा है, शायद वो बारिश का गाना तो नहीं है लेकिन बहुत ही कूल गाना है, रीमिक्स टाइप कह सकते हैं उसको, और आपको एकदम से 90s में ले जाएगा जब दिलेर मेहंदी काफ़ी छाए हुए थे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आने वाली हूँ। दिस इज़ योर होस्ट पारुल भाटिया। आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल ग्रेट वेदर डे, क्योंकि ये ग्रेट वेदर ही है। यहाँ इतने समय में हमें इतनी गर्मी सहनी पड़ी, फाइनली हमें एक रिस्पाइट मिला है, एक ब्रेक मिला है और खूब छप्पड़ फाड़ के मिला है। एक क्विक ब्रेक के बाद आ रही हूँ। स्टे राइट हियर, डोंट गो एनीवेयर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha?
9: Suno na, mera wo wala set kahan hai?
10: Kaun sa?
9: Arre wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
10: अरे सारे तो सेम है।
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
10: ओ हाँ, ये तो अलग है।
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
12: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
14: भूख लगी
15: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
17: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
18: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
19: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
11: नेक्स्ट क्वेश्चन।
19: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
11: याद नहीं।
19: बफे में क्या था?
11: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
6: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
14: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
20: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
14: Miss Clicks?
21: 100 logon ne click bhi kiya.
14: Customers kitne aaye?
22: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
21: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a FunAsia network product.
0: And listeners, welcome. कुछ गाने back to back मैं request में आपके लिए play करने वाली हूँ. आपको play करने से पहले बता दूँ listeners that FunAsia Network now brings its media expertise to your social media with Relative Media, Real, R-E-E-L, Relative Media. From engaging reels and graphics to captions, content distribution and amplification through FunAsia's radio, digital and community platforms, Relative Media gives your brand a complete content solution. Call 469-424-3188 to book your content audit today. And Relative Media is powered by FunAsia Network. एक गाना जो है इसकी रिक्वेस्ट आई है, इसके बाद दो गाने बारिश के ऊपर भी आ रहे हैं आपके लिए.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग ये लिया गया था फ्रॉम द मूवी गरम मसाला. आज बिलीव इट नॉट सारे गाने इतने सारे में तो अक्षय खन्ना नहीं अक्षय कुमार है. अक्षय खन्ना का भी एक गाना है. आई एम वंडरिंग कि भाई शाहरुख खान के ऊपर कोई ऐसा गाना क्यों नहीं है जिसमें बारिश हो. मे बी यू नो द प्रोड्यूसर्स शुड प्रोड्यूस अ सॉन्ग शुड मेक अ सॉन्ग फॉर हिम इवन जस्ट अ वीडियो सॉन्ग. वुड लव टू सी दैट. अब दो गानों जिनकी रिक्वेस्ट आई है तीन इनफैक्ट बैक टू बैक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. उससे पहले बता दूँ लिसनर्स दैट ये जो गाने हैं इनसे जब हम सुनते हैं ना इन गानों को वी आर टेकन बैक टू आर कंट्रीज वी आर टेकन बैक टू द सिटीज वी वर बोर्न इन. एंड वहाँ से हमें याद आती है चाहे वो बारिश आपकी माउंटेंस में हो या आप कहीं ओशन के पास रहते हो वहाँ की बारिश हो आप साउथ के हों नॉर्थ के हों या पाकिस्तान के हों श्रीलंका के हों वो एरिया जो है नेपाल के हों एक अलग ही उधर एक अलग ही जैसे कहते हैं ना महक है. जब बारिश होती है मन करता है कि बाहर जाके नहा लें और साथ साथ उसके बाद जो इतनी अच्छी स्मेल आती है सॉइल की मिट्टी की एक उसकी अलग ही महक होती है. डोंट यू थिंक लिसनर्स. उसके साथ साथ वी आर गेटिंग अ कॉलर. लेट्स सी इफ दे वांट टू से समथिंग. यू आर ऑन एयर. हु इज दिस?
1: हाय आई थिंक यू सेड देयर इज नो सॉन्ग फॉर शाहरुख खान ऑन बारिश.
0: यस इज देयर.
1: आई थिंक घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम फ्रॉम दिल तो पागल है.
0: यू आर राइट. Yeah, somehow I relate that song more to Madhuri Dixit. I don't know.
1: Yeah, but I think there is Shahrukh
0: Khan in it. You're right, actually. But I think I want another kind of song. But no problem. Do you want to hear that?
1: Yes, please.
0: ठीक है, मैं चला देती हूँ अलग गाना.
1: Thank you.
0: You bet. Yes, of course. एक गाना है उनके ऊपर तो ये definitely मैं कोई लड़की है आपके लिए definitely play करने वाली हूँ. और साथ साथ listeners बता दूँ आपको कि discover Himalayan Bazaar in Grand Prairie for authentic South Asian groceries, fresh produce, premium halal meals, hot snacks and everyday essentials all under one roof. Visit 5103 Magna Carta Boulevard or enjoy free delivery on orders over $50 within 5 miles. That's Himalayan Bazaar for you.

एंड ये गाने में फिल्म थी गुरु और ए आर रहमान जी का म्यूजिक था एंड श्रेया घोषाल की आवाज एंड ऑफ कोर्स इसमें थी द वेरी ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली द गॉर्जियस ऐश्वर्या राय एंड इफ यू सी हर इन दिस फिल्म शी इज एब्सोल्युटली रैविशिंग जो मस्ती से डांस कर रही हैं रेन में Beautiful is the word for her. Nothing shorter than that. With that, listeners, पहुंच गए हम लोग नेक्स्ट गाने को. आई नो कि जो गाना इसकी जिसकी रिक्वेस्ट आई थी जो जिसने मुझे कॉल भी किया अभी लिस्नर ने कि घोड़ी जैसी चाल कोई लड़की है वो मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए और साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ दैट टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर इज नाउ ओपन इन इट्स न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिस्को लोकेशन ऑफरिंग एक्सपर्ट फिजिकल थेरेपी स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन पेल्विक फ्लोर थेरेपी Massage therapy and more with personalized one-on-one care. Visit TexasStarRehab.com to schedule your consultation today in Frisco or Irving.

तजब फन सॉन्ग दिल तो पागल से लिया गया ये गाना। एक और गाना आपके लिए जो मैं प्ले करने वाली हूँ वो भी बारिश से रिलेटेड है। इससे पहले आपको कुछ बता दूं लिसनर्स SFL वर्ल्ड वाइड के बारे में। फेस्टिवल सीजन कॉल्स फॉर देसी आउटफिट्स, मिठाई, नमकीन एंड ऑल योर फेवरेट गुडीज। ब्रिंग देम होम विद SFL वर्ल्ड वाइड विद डोर स्टेप पिकअप एंड डिलीवरी प्लस ओशन शिपिंग फॉर लार्जर आइटम्स लाइक पूजा मंदिर्स, साथ साथ झूलास एंड फर्नीचर। फॉर शिपिंग एंड मूविंग विद इन द USA फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड विद SFLWorldwide.com कॉल 1-800-691-2335। SFL वर्ल्ड वाइड ब्रिंगिंग फेस्टिविटीज क्लोजर टू होम। बस इसके बाद जो गाना है वो भी बड़ा कूल सा है, आपके लिए प्ले करती हूँ। एंड देन छोटे से ब्रेक के बाद एक दो और गाने मैं आप लोगों के लिए प्ले करूँगी, जो कि आपके पास शायद कोई रिक्वेस्ट होगी किसी ऐसे गाने की जिसमें बारिश हो, कुछ ऐसे।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: सुबह ड्राइव पे
2: यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो।
0: दोपहर फोन पर
3: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
1: शाम को घर पर
4: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
1: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर, तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
0: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
1: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net।
0: Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com।
6: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
7: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
6: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
7: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
8: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
9: That garba was totally worth it. We had so much fun.
10: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
9: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
11: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
13: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
14: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
15: And indeed, welcome listeners. थोड़ी देर पहले एक दो और रिक्वेस्ट जो आई हैं, ये गाना भी बहुत अच्छा है, जो कि है ये मौसम का जादू है मिथवा, हम आपके हैं कौन से लिया गया है। बहुत ही रोमांटिक गाना है और मौसम के ऊपर है, तो डेफिनेटली बनता है ये गाना। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी इंफॉर्मेशन लाई हूँ, दिस ट्रैफिक तो नहीं है अभी, लेकिन ये फुल जो अभी गाने आप सुन रहे हैं इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा। इंजर्ड इन अ कार, ट्रक और स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, फोकस ऑन हीलिंग व्हाइल अटर्नी उमर फाइट्स फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही विंस। कॉल 4693005046 और यू कुड ऑल्सो विजिट अटर्नी उमर, दैट्स omar.com, दैट्स अटर्नी उमर .com.
16: 8, 7, 6, 5, 4,

आंसू रस भर जाती है कि फिल्म ने जो जादू है वो तो डेफिनेटली है ही. उनकी सारी फिल्म दे मेक यू फील सो गुड. सारी फैमिली फिल्म्स होती हैं और बहुत ही क्यूट क्यूट सी फिल्म्स होती हैं. थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है बट देन हैप्पी एंडिंग्स होती हैं. कभी कभी थोड़ी बहुत कुछ ट्रेजेडी भी होती है लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट हैप्पीनेस आती है जब सब कुछ इन द एंड ठीक हो जाता है. और ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये उनकी फिल्म से तो नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा गाना है और श्रद्धा कपूर एंड टाइगर श्रॉफ आप समझ गए होंगे कौन सा है. ये गाना बागी फिल्म से लिया है और ये डेफिनेटली पूरा का पूरा रेन के ऊपर है, बारिश के ऊपर ये गाना छम छम.

जो मस्ती हो रही है इस गाने में, टाइगर श्रॉफ एंड श्रद्धा कपूर जो मस्ती कर रहे हैं, क्या दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया डांसर्स हैं। एंड अगर आप इसका वीडियो देख सकते हैं तो आप डेफिनेटली देखिएगा और शायद इस बारिश में बाहर जाके छमछम करिएगा। विद दैट, अभी तो मैं बस इसी वक्त आप लोगों के साथ हूँ एंड विल ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग यू गाइज अगेन। एंड टिल देन, कीप इट हैपनिंग, कीप इट जेन्युइन एंड स्टे सेफ एंड बी ब्रेव एंड कीप इट रियल हैपनिंग एंड See you next time. This is your host, Parul Bhatia, signing off right now.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।